परेशानी कहाँ है? अमल में परेशानी। तो अमल में जो परेशानी है उस बहरान से कैसे बचा जा सकता है, एक चैलेंजिंग इशू है। कोशिश हमको करना चाहिए, इसीलिए कुरान या सूरे में नमाज में बार बार हम कहते हैं एहदना सिरातल मुस्तकीम, इसलिए कि एजाज पलट जाने इधर उधर जाने के बड़े इम्कान हैं। सुबह पढ़ा था, जहर तक ना जाने कितने ख्यालात ने हमें अपने उस पॉइंट से हटा दिया है, फ़ौरन जाके पलट के कहते हैं एहदना सिरातल मुस्तकीम, यानी उस लाइन ऑफ एक्शन में रहना ज़रूरी है, वरना जो है हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मौला का ये कौल है, बहुत ही गौर से सुनिए, और फरमाते हैं मौला आरफ़ो बिज़मान। आरफ़ो ये जो अरबी ज़बान है इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, जिसको अफ़ल तब्दील कहते हैं, सबसे ज़्यादा जानने वाला किसका? ज़माने का। यानी असेसमेंट अगर टाइम का अगर हम कर सकें ज़माने का, आरफ़ो बिज़मान लम युतअज्जब मिन अहदाथिही, अगर वो जान गया आज क्या ज़माना है, वो कल को वो ख़ुद प्रिडिक्ट करेगा ये होगा, उसको ताज्जुब ही नहीं होगा कि आज ये क्यों हो गया। आज बॉम्बे के हालात लीजिए, हिंदुस्तान के हालात देखिए, अकायद के हालात देखिए, मुहर्रम अभी शुरू नहीं होता, कोई भी इमाम हुसैन के मकासद पे काम नहीं करते, ये शुरू हो जाता है कि वो कैसे हो, मातम कैसे हो, खून कर मातम, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, ऐसा इंतशार फैलाया जाता है कि इंसान हदफ़ हुसैन से हट जाए। इस बहरान से बचने के लिए हमें तदारुक करना चाहिए, हमें जो है एक इस्तकामत की ज़रूरत। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं, रब मानने से कुछ नहीं होता, इसलिए कि सामने शैतान है, पीछे शैतान है, दाहिने शैतान है, बाएँ शैतान है, नेगेटिव फोर्सेस इंसान को असल सिरात से हटाते जाते हैं। ऐसे मौके पर क्या करना है? इस्तकामत दिखाना है, स्टेबिलिटी दिखाना है, पैरों को जमा देना है, और पैरों को जमा देगा तब अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाजिल होंगे। ये नहीं कि नाजिल होते थे ना, अगर आपने ये किया तो नतीजा उसका यह है कि अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें आकर के ये बताएंगे डोंट बी वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा वायदा सच्चा है, तुम हकीकत पे जन्नत पाने वाले हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। असेसमेंट ऑफ द टाइम, जो आज के ज़माने को असेस करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो मौजू है बहुत ही चैलेंजिंग मौजू। हमारे पास मारिफत नफ्स, मारिफत परवरदिगार सबसे बड़ा मौजू है। इंसान सिर्फ ये जान ले कि उसका खालिक कौन है, उसके लिए तालीक जो की गई है मन आरफ़ा नफ्सा फ़कद आरफ़ा रब्बा, नफ्स को पहचान। इंसान अपने नफ्स को जानता नहीं है, अगर जान जाए तो वो सस्ते दामों बिकता नहीं है, तो जान जाए तो वो झूठ बोलेगा क्यों, जान जाएगा तो लूटेगा क्यों, जान गया कि उसकी कीमत कितनी है। मौलाना शब हिजरत किस चीज़ को बेचा था? हाथ को बेचा था, पैर को बेचा था, क्या चीज़ तो मौलाना ने बेचा था? मौलाना शब हिजरत मैं को बेचा था। जब मैं बिक गया तो उसके बाद कोई नहीं है, इश्तरा खरीद खरीद लिया जाते परवरदिगार। अल्लाह ने कहा तेरे मैं को मैं ले रहा हूँ, मेरा मैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले वाजिल फरज। फोकस्ड रहिए और कोशिश ये कीजिए, अगर हो सका तो, हम लोगों में वो आदत नहीं है नोट डाउन करने की, अब माशाल्लाह ऑनलाइन होती हैं, घर जा कर के कोशिश कीजिए इनको नोट डाउन करें, देखें कि क्या बातें की गई और ये बातें रिलेटेड टू टॉपिक हैं या नहीं हैं, और कितनी डीप हैं, इस पर क्या काम करना चाहिए। एक जुमला कहूँ मैं, है ना, आप लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, दीन को सिर्फ मौलवियों के हवाले मत कीजिए, दीन सबकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ मौलवी की ज़िम्मेदारी नहीं है। क्रिश्चियनिटी है, प्रीस्टहुड है उनके पास, एक प्रीस्ट हो गया वो शादी ना करे, ये ना करे, वो ना करे, वो अच्छा रहे, पाकीज़ा रहे, कौम जाए कहीं और, वो बख्शा हुआ संडे के दिन सबको बख्श दे, उनके पास ऐसा, वो हमारे पास ऐसा नहीं है। मौलवी मौलवी हैं, आप भी मौलवी हैं, आपके अपने हदूद में। हदीस में है कि कुल लोगों

कहते हैं नमाज से, बोलिए सब लोग, नमाज से मोहब्बत है जी। हमको सबसे मोहब्बत है, नमाज से मोहब्बत नहीं है जी। हम मजलिस से मोहब्बत है, रोने से मोहब्बत है, मातम से मोहब्बत है, नोहे से मोहब्बत है, सलाम से मोहब्बत है, खुद नमाज से हमको कोई मोहब्बत नहीं है। मौला फरमाते हैं कि मुझे नमाज से मोहब्बत है, दूसरा क़ुरान की तिलावत से मोहब्बत है। मौला इमाम हुसैन का कौल है, मेरा कौल नहीं है। मौला फरमाते हैं कि नमाज से मोहब्बत है, तिलावत क़ुरान से मोहब्बत है। और मौला के मानने वाले हुसैनी जो है ना कुरान पढ़ते ना नमाज। मैंने कह रहा हूँ आप इन जनरल गुफ्तगु हो रही है, इस कौन है इसका जिम्मेदार, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई है जो इन मोमिनीन को सुला रहा है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा दीन ने कोई फ्री सर्टिफिकेट आपको दीन नहीं है, जब तक करोगे नहीं तुम्हें पाने में पाने वाले नहीं हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। आजिल फराज, हम सब मिलके ज़रा सा अच्छी तरह से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मैं इमाम हुसैन की हदीस सुना चुका हूँ, इस मजलिस हुसैन में हम वायदा करें सब मिल करके इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में 10 आयतें जब तक नहीं पढ़ेंगे ज़िंदगी को सुबह हर सुबह तर्जुमे के बग़ैर हम कोई और काम नहीं करेंगे। अब देखिए क़ुरान क्या करता है, क़ुरान जैसे ज़रा सा गौर से आप पढ़ने लगेंगे आपके जहन में सवाल आते रहते हैं जी, आपको जवाब की तलाश में जाना पड़ेगा। तो एक जुमला कहूँ, क़ुरान सवाल है, अहले बैत जवाब। आप सवाल जब उभरेंगे तो आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत है, ये सवाल जो उभरेंगे किसी से पूछ लीजिए, कोई इत्मीनान का जवाब नहीं देता, अहले बैत जवाब देते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये इतनी खूबसूरत, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग इसम आज़म सुने हैं ना भाई, इसम आज़म क्या चीज़ है, इसम आज़म, इसम आज़म के माने अगर किसी के पास ये आ गया ओ हो तो वो कमाल करेगा। तो आपको चाहिए इसमें आज़म, दो में लीजिए, इसमें जाइए, अब देखता हूँ कि कौन कौन इस पर अमल करता है इंशाअल्लाह। इसमें आज़म दे रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, तफसीर तस्नीम आयतुल्ला जवाद आमली, ये तफसीर अजीब व गरीब की है, 40 साल इस शख्स ने तफसीर किया है और रिकॉर्डेड है, 50 जिल्दों से ज़ायद तफसीर, एक एक लफ्ज़ क़ुरान को डाइसेक्ट किया है, बाकायदा काटा है और एक एक लफ्ज़ को कुरान से जवाब दिया है, अजीब व गरीब आलिम आयतुल्ला जवाद आमली हफ़ज़हुल्लाह। वो फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह जो है इसमें आज़म है जी, हमारी तरफ से नहीं, हदीस मासूम की है कि लफ्ज़ अल्लाह क्या है, इसमें आज़म है। अल्लाह के कितने नाम हैं कुरान में, 99, सब जानते हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। ये जो अल्लाह किसको रिप्रेजेंट करता है, 99 नेम्स को, इसीलिए लफ्ज़ अल्लाह का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा किसी ने किया है खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, ये सही तर्जुमा नहीं है। अगर इंग्लिश में कहें द नेम ऑफ गॉड द ग्रेशियस द मर्सीफुल, गलत है ना, अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह ही है, इसलिए कि जैसे ही अल्लाह कहते हैं हमने रहमान भी कहा, रहीम भी कहा, सत्तार भी कहा, गफ्फार भी कहा, तो नहीं एक अल्लाह के साथ पूरे नामों को हमने ले लिया, तो इसमें आज़म नहीं तो क्या है। तो जो ननो नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना बुलंद है। कहते हैं कि नजफ में एक साहब जियारत को गए, अपना छोटा 10-12 साल का बच्चा साथ था और उसने हाथ छुड़ाया और गया छत पे चला गया, यहाँ तक कि एज पर पहुँच गया, बाप है नीचे से परेशान हो गया कि कहीं वो गिर ना जाए, चुनाचे लर्जा गिरा, नीचे से बाप ने कहा या अल्लाह, सबों ने देखा कि बच्चा जो है ग्रेविटी से हट करके एक फूल की पंखड़ी है जो बाप के गोद में जा रहा है। अभी समझिए ये तो वली अल्लाह है भाई, ये शख्स लफ्ज़ एक अल्लाह से अपने बच्चे को बचा लिया, ये क्या चीज़ है इसमें। सब लोग गिर गए, कपड़ा कोई मार फर रहा, ये बहुत बड़ा आदमी है, सिर्फ एक लफ्ज़ या अल्लाह कहने से बच्चे को बचा लिया। उसने कहा छोड़ो यार, मुझे मेरे पीछे क्यों करे हो, फिर तुम बताओ ये कहाँ से तुमने ये किया। उसने कहा मैंने अल्लाह कहा नमाज, मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह कहा रोज़ा, मैंने रोज़ा रखा, अल्लाह कहा सच, मैंने सच बोला, अल्लाह ने कहा ज़कात, मैंने ज़कात दिया, अल्लाह ने कहा खुम्स, मैंने खुम्स दिया, अल्लाह ने जो कहा ज़िंदगी भर मैं सुनता रहा, क्या मेरी ये अल्लाह नहीं सुनेगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले।

तक आमिल नहीं बनेंगे, अमल नहीं करेंगे, उस पर असर होने वाला नहीं है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाला। ये मुकदमा कुछ बड़ा हो गया, लेकिन ज़रा सा आप इस पर गौर करें। आज के ज़माने की वनरेबिलिटी, यानी आज के बहरान को बता रहा हूँ, आज का बहरान इंसान के नज़दीक इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है। उधर से इधर से ये क्लिप आया, ये क्लिप आया, वो क्लिप आया, ये क्लिप आया। पहले तो सुनते थे, अब वो सुनना भी छोड़ दिए, सिर्फ स्वैप करते चले जाते हैं, स्वैप करते। पहले जो 5-10 मिनट की आदि थी, अब कहते हैं कि 2 मिनट की बनाओ। अब 2 मिनट की भी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि अब वो जो है आउटडेटेड होता चला जा रहा है। इसलिए कि मैसेजेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस नहीं है। चाहिए इस दौर में हमें बेदार होना है। मैं पाकिस्तान में एक देहात में, एक शहर, छोटा सा शहर कंपेयर टू बड़े शहरों के, जैसे कराची लाहौर से हटकर एक शहर में नाम लेना नहीं चाहता। उस शहर में एक नौजवान ने मुझसे एथिज़म से गुफ्तगू की। बहुत से बच्चे जवान माशाल्लाह बैठे हुए हैं, और आजकल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी जो चक्कर चली हुई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, डोंट बिलीव इन गॉड, हैव फन। ये गाड़ वाड़ की चक्कर छोड़ो यार, मज़े करो, अच्छे खासे रहो, ये खुदा वदा कुछ भी नहीं है। इस दौर में कहाँ पर मुस्लिम कंट्री में, पाकिस्तान में एक शहर में मुझसे एक जवान यूनिवर्सिटी गोवर, उसने कहा कि मौलाना एथिज़म इज़ दी बेस्ट सिस्टम, उससे हटकर कोई रास्ता नहीं है। मैंने सोचा ये बच्चा कैसे भी, पाकिस्तान में माहौल भी है मुसलमानों का और कंट्री भी मुसलमानों की, ये कहाँ से फिक्र आ रही है। मैं बताता हूँ, बारीक भी नहीं, देखिए अच्छी तरह सुनेंगे आप लोग, बहुत ही अहम चीज़ है। आज का दौर है, बहुत से बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे कोरिया में पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। और अपने मुस्लिम कंट्री से जाकर वहाँ जब देखते हैं, वहाँ नज़्म देखते हैं, वहाँ सफाई देखते हैं, सच्चाई देखते हैं, अमानतदारी देखते हैं, तो अब ये कंट्रडिक्शन देखते हैं। ये तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रोज़ाना कर रहा है, 5 मरतबा अदान आ रही है, ना वहाँ अदान है ना कुछ है, बग़ैर उसके ये सच्चाई कहाँ से है, अमानत कहाँ से है। तो पता चला दीन में कुछ गड़बड़ है, तो इससे बेहतर दीन को चले जाना, दीन से चले जाना ही बेहतर है। इस दौर में रिलीजन की गुफ्तगू इज़ नॉट ए ईजी चीज़। मैं बैठ करके 1 घंटा समझा दूँ, कुछ भी बोलूँ, वाह वाह करा लूँ, लोगों को उठा लूँ बिठा लूँ, मुझे वो भी आता है। ख़तीब हूँ मैं, 1 घंटे तक आपको उठाता बिठाता रहूँगा, ऐसे यकीन कर लीजिए। इतना जानता हूँ कि आपको कैसे जोश में लाना है, आपको कैसे रुलाना है, आपको कैसे बिठाना है, मगर आपका कबूतर बिगाड़ करके मैं अपना उल्लू ठीक करना नहीं चाहता। ये मेंबर का ये टाइम है, रोज़े क़ियामत ये पूरा मजमा मुझसे पूछा जाएगा, बम्बई में ये मजमा तुम्हारे सामने आया था, तुमने क्या मैसेज दिया, अपना उल्लू ठीक किया या अल्लाह का पैगाम दिया तूने। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस वनरेबिलिटी में, इस बहरान में मुझे दीन समझना है, इट्स अ टफ चॉइस, बहुत ही मुश्किल मसला है। कि एक ग्लोबल विलेज हो चुका है मेरे ऑन में, एक ही टाइम पे मैं न्यूजीलैंड के फ्रेंड से भी बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड से भी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, उसी वक्त जो है यूरोप में जर्मनी में रहने वाला एक फ्रेंड भी है ऑनलाइन, एक ही सेकंड में मैं सबसे बात कर रहा हूँ। ये दुनिया गया मुट्ठी में, इंसान की आ गई है। इस दुनिया में मेंबर अगर मुट्ठी में नहीं रहा तो फिर आपको पयाम पहुँचने वाला नहीं है। इसीलिए मौला फरमाते हैं आरफुन्नास आरफो बेज़माने, इस ज़माने को सबसे ज़्यादा पहचानने वाला, टाइम को जानने वाला ही कामयाब हो सकता है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। अज्जिल फरजहुम, तो इसका हल क्या है मौलाना? फिर जाएंगे हम तारीख में, जंग जमल, मालूम है जंग जमल आसान मसला नहीं है, शायद हम होते हम आप भी होते परेशान हो जाते। एक शख्स आया मौला के पास, मौला समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आपकी ज़ात और दूसरी तरफ माशाल्लाह, वेयर शुड आई गो, कहाँ जाना चाहिए मुझे? ऑब्वियस क्वेश्चन है ये, बहुत ही यानी टची, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। मौला ने फरमाया लोगों के ज़रिए

0: हकदार को मत पहचानो, यानी बाकरी उन्हें ये वो उससे नहीं पहचानो। एरफिल हक तारफ अहला, एरफिल बातिल तारफ अहला। हक को पहचान ले पहले, हक वाले मालूम हो जाए। यानी जैसे पैरामीटर्स को अगर आपने पहले फिट कर दिया, जब तक वो पैरामीटर्स में नहीं जाएंगे, आप उसमें वो कंप्यूटर आपकी बातों को लेने वाला नहीं है। हक का एक पैरामीटर है, बातिल का एक पैरामीटर है। मौलाना ने फरमा पहले हक को पहचान, हक को पहचानने के बाद हक वाले मालूम होंगे। लोगों को देख करके हक डालने की कोशिश है, बहुत ही खूबसूरत है। यानी किसी से मोहब्बत किया हमने, उसके बाद हमने उसके ऊपर हक डालना शुरू किया, वो जो भी कर दे जो भी कर दे वो सच है। नहीं, ऐसा नहीं है। हक पहले पहचान लीजिए, अगर वो हक बोल रहा है तो मानिए, वरना जो है वो हक नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। वाजिल फरजम, ये हो गया मेरा कल यानी इब्तदाई मुकदमे की बातें हैं। जो बहस अदालत में है, जब लफ्ज़ अदालत, लफ्ज़ अदल इलाही, एक तो अदल दूसरा इलाही, तो हम लोग ला रहे हैं, इन जनरल गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। एक तो जस्टिस ऑफ गॉड, जिसको आपने देखा है, उन्वान देखा है ना आप लोगों ने, मौजू क्या दिया गया है, क्या दिया गया, डिवाइन जस्टिस। डिवाइन यानी इलाही, ये जस्टिस डिवाइन, तो ये दो चीज़ों को पहले समझिए आज अच्छी तरह से। हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं डिवाइन को समझ रहे हैं, उसकी जस्टिस को समझ रहे हैं। इसको जब तक कि हम लोग तय नहीं करेंगे, हमारी गुफ्तगू का आगाज़ जो है इस तरह से होगा, हम सेट करेंगे माइंड को कि 500 इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, इस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में मुझे किस तरह से पिक करना है, किसी एक मौजू को क्या सलीका है, समझाऊं मैं आपको। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मसलन ये जो एथिस्ट के जो टेंडेंसीज को बता रहा हूँ मैं, उस बच्चे ने कहा कि ये कुरान फैब्रिकेटेड है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी एक ने बना लिया, एक शख्स ने, हम कैसे माने कि वही है अल्लाह की, बहुत अच्छा सवाल है। और ख़ुसूसन मकतब अहले बैत में इन सवालों को दबाया नहीं गया है, इन सवालों को एंटरटेन किया गया, हत्ता अल्लाह के वजूद से मुतालिक बहस कर सकते हैं। हमारे पास बाब हादिया शिक्ला जानते हैं कि बाकायदा किताब अल्लामा हिल्ली की, जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से मुतालिक गुफ्तगू होती है, कोई परेशानी नहीं। तुम एथिस्ट बनो, मैं जो मुवाहिद बनता हूँ बहस करूँ अच्छी तरह से, तुम जितना दिल में बात आए सवाल करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम जवाब देंगे, इतना जवाब देंगे कि तुमको मुतमईन करेंगे। एक चीज़ में जाते चलते चलते एक किस्सा है जो इससे रिलेटेड है। सरकार के जाने के बाद इस दुनिया से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम,
1: नारे तकबीर,
0: हदीस को लिखना ममनू था। क्यों था? वो लोग दलील पेश करते हैं कि कुरान का प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए जो इसको मना किया गया, ठीक है मान लेते हैं। 100 ईयर्स तक हदीस लिखी नहीं गई, 100 साल तक। तो 100 साल के माने तकरीबन 3 जनरेशन जो है आके निकल गए, हदीस का पता नहीं था। ज़बानी जो दिल में बातें थी वो बताई जाती थी, सिवा अहले बैत की। मौलाए कायनात बराबर इनक्रेज करते थे, जो चाहने वाले बराबर बताते थे, बराबर खुतबे देते थे, बराबर रिकॉर्ड होते थे, लिखने वाला लिखता था। चुनांचे आज नहजुल बलागा की सूरत में आपके पास बहुत कुछ ख़जाना है, उसी तरह से गुररुल हिकम वगैरह। 100 साल के बाद एक दौर आया, 100 साल के माने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाह सल्लम
1: मोहम्मद वाले मोहम्मद बाजिल फरज।
0: इमाम बाकर कौन से इमाम हैं? 5वें। कौन से मासूम हैं? 7वें। 5 और 7 तो याद करने के लिए, इमाम की विलादत 57 हिजरी में, आसान है 5 और 7, उसको डबल कर दीजिए हो जाएंगे।

0: 114 57 में इमाम बाकर की विलादत है, 114 में इमाम की शहादत। 100 साल बाद के माने इमाम बाकर के इमामत का ज़माना है, ठीक, और उसी ज़माने के बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की इमाम, ठीक है। اللهم صل على محمد। जिस तरह से आज के दौर में वनरेबिलिटी है, जिस तरह से आज का जवान परेशान है, मुशविश है, किस बात को माने, ये मौलवी वो कहता है, वो मौलवी ये कहता है, ये अकीदा ये है, ये वो ये है, चक्कर चली हुई है, किस तरह से एक सीधे रास्ते पे चलें, एक चैलेंजिंग इशू है। उस ज़माने वैसे ही था, दहरिया दहरिया कहते मेटेरियलिस्टिक, वो लोग बिलीव करते थे नो गॉड, इत्तखद इलाहु हवा, सूरह जासिया कुरान का 45 सूरा है और 23वीं आयत है, उसने अपने ख्वाहिशात को खुदा बनाया। व्हाट इज़ गॉड, मैं समझता हूँ, हमारे पास भी उमन गुफ्त, मैं समझता हूँ, मैं समझ, अरे भाई मैं कौन हूँ भी समझने वाला, दीन जी गाड़ी ख़राब हुई ले लो, मैं समझता हूँ, स्पानर ले लो जी, खोलो काम करो, नहीं उसके बाद फिट नहीं कर सकोगे, मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ तो कहाँ है, जब तुम मोटर अपनी मोटरसाइकिल को ठीक नहीं कर सकते इसलिए कि तुम मैकेनिक नहीं हो, बीमार हो तो तुम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते जब तक ये डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, दीन की बातों को तुम मैं समझते हो कहाँ से हो,
1: क्या बात है।
0: तो उसके लिए एक्सपर्ट्स होना चाहिए जिसके पास हमको रुजू करना है, जिससे हमको दीन लेना है, इसी का नाम इश्तेहाद है, इसी का नाम उलमा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दहरिया, दहरिया के माने एथिस, अब तो आज की बात नहीं हुई, तो हमको टैली कर रहे हैं आज के ज़माने की, मौलाना आज के ज़माने में जवान ये सवाल कर रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं, आज नहीं है, ऐसे सवालात इमाम की ज़िंदगी में हो चुके हैं। मुफज्जल तौहीद मुफत्तल किताब है, बहुत ही खूबसूरत, उर्दू में 3 जिल्दों में बहुत अच्छी तरह से छप गई है, कराची में, पाकिस्तान में ज़हरा एकेडमी ने बहुत अच्छी साइंटिफिक किताबों को छापते हैं मौलाना मिसमी, अगर हो सके तो ऑनलाइन भी देखिए या मंगवाइए, पढ़िए घरों में किताबों को, किताबों के बगैर नहीं होता, अगर नहीं है तो इंग्लिश में भी ऑनलाइन मौजूद है उसका ट्रांसलेशन, बहुत ही खूबसूरत किताब है। तौहीद मुफज्जल, ये कौन है मुफज्जल इब्ने उमर, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, और ये 2-4 दहरिये बहुत ही मशहूर हैं, अब्दुल्ला इब्ने अबी लौजा, अब्दुल्ला इब्ने अबी नज़ीर, सब अब्दुल्ला हैं, कोई भी अब्दुल्ला नहीं जी, ये भी अजीब गरीब है, अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला के माने क्या हैं, अल्लाह का बंदा, मगर कोई भी अल्लाह का बंदा नहीं है, चारों के चारों बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, गॉड इज़ देयर और नॉट, खुदा है या नहीं है, ये बेचारा मोमिन बैठा हुआ है, कान उसके पक गए, उसने चेक कर कहा क्या पक रहे हो, ये चारों ने कहा महलन महलन हैं, तुम किसके शागिर्द हो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है यार, दलील पेश करो, तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो, अगर तुम इमाम सादिक के शागिर्द हो, हम जब भी उनसे पूछते हैं तो वो कभी गुस्से में आते ही नहीं हैं, हमारे दला हमको हर सवाल का जवाब देते हैं दलाइल के साथ, तुम भी दलाइल के साथ जवाब दो, और बेचारा गुस्से की हालत में जाता है सीधे इमाम सादिक के घर को, कितना अच्छा है कि काश हम इमाम तक पहुंच सकें इस तरह से जी, इंसान जैसे बहरान में आ जाए सीधा चले जाए दरवाज़े को, वो दरवाज़े भी मिल जाएगी, इसीलिए कुरान कहता है कि जाओ घरों को सामने से, पीछे से मत जाओ, यस अलूना का नीला अहिल्ला, ये पूछते हैं हिलाल क्या है, उसके बाद क्या आयत है, ला तदखुलुल बुयूत, घरों में पीछे से मत जाओ, ये छोटी सी चीज़ है भाई, पीछे से मत जाओ, हर इंसान सामने से ही जाता है, पीछे से क्यों जाता है, इमाम से पूछा गया, मौला ये छोटी बात को कुरान क्यों बता रहा है, मौला ने कहा ये छोटी बात नहीं है, कुरान ये कह रहा है इल्म भी एक दरवाज़ा रखता है, दरवाजे से आओ, वो दरवाजे हम हैं, तो इल्म को जो है अहले बैत से लीजिए तो आसानी मसाइल हो जाएंगी, छोटे इमाम के पास गया वो, मौला ने चेहरे को देख के समझ गए मौला कि बेचारा परेशान है और बहुत ज़्यादा मुखी खाया है और इसका इलाज होना चाहिए, मौला ने कहा क्या हो गया, मौला ये हालात हुई, कहा कल से बैठो मैं तुमको लेक्चर दूँगा, 3 लेक्चर्स हैं जिसको एक्सपेंड किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है मौला के, जो तौहीद इलाही पर बहस है, क्या बहस की मौला ने, कायनात यूनिवर्स, यूनिवर्स की ऑर्डर्स पे बहस की, और उसके बाद साबित किया ऑर्डर बता रहा है दुनिया का, देर इज़ ए person

who is running the show. बगैर उसके ये order हो ही नहीं सकता, ये fluke में नहीं हो सकता. बहरहाल ये बहस है. तो तीन lectures को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है और तीन किताबों में छपा है. और आज scientific तौर पर मोहम्मद अली सैयद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है. आप लोग इसको पढ़ें ज़रूर. इस किताब में मौला इमाम सादिक अलैहि अफजल सलात व सलाम ये प्रूफ कर रहे हैं कि इंसान को अगर समझना है उसका गॉड कौन है तो कहाँ से शुरू करें भाई. लीजिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ एटम? क्या है एटम? अब एटम की तारीफ करता साइंस कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और 165 लॉज हैं. एक एटम में अंदर कितने कानून हैं? 165. एक एटम को खुदा ने कामिल बनाया. तवज्जो, एक एटम भी बनाया तो खुदा ने कामिल बनाया. क्या दीन नाकिस बनाएगा? जब झगड़े होने लगे मौला ने फरमाया तुम लोग झगड़े कर रहे हो, गोया अंजलल्लाह दीन नाकिसन. क्या अल्लाह ने नाकिस दीन को नाजिल किया जो तुम लोग पूरा कर रहे हो? अल्लाह ने कामिल, अल्यौम अकमलतु लकुम. जब दीन कामिल हो गया तो ये कामिल दीन को लीजिए. जब एटम के अंदर 165 लॉज हैं, ये पूरा ऑर्डर है, उसको ब्रेक कर दे तो एटम बम बन जाता है. तो ये एटम की खसूसियत है. तो अल्लाह ने इस पूरे सिस्टम को हर तरह से नज़्म किया है. कहा जाता है कि बरगे दरख्तों ने सब्ज़ अज नज़रे होशियार, हर वर्की दफ्तरीस मारिफते किरदगार. ये जो पत्ते हैं ये पत्ते पत्ते नहीं हैं. अगर आँख अच्छी रहो तो ये मारिफते परवरदिगार के लेजर हैं. तो ये पत्ता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इल्म का ख़जाना है. इसी तरह से जिस तरह से तुम्हारे हाथ में रग देखते हो उसी तरह से पत्ते भी हैं. तो क्या कह दिया इसको? लीजिए मैं बातों में आ गया हूँ, यहाँ तक एक जुमला ज़रूर कहूँगा मगर इसके लिए अलग सी बहस की ज़रूरत है. मगर ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी बात. सलवात पढ़िए मोहम्मद. सबके पास गैजेट्स हैं ना भाई? सबके सामने गैजेट्स हैं ना, है ना भाई? ये किसी न किसी कंपनी के हैं. ठीक, कंपनी ने बना दिया, आपके सामने गैजेट आया. बनाने वाले और गैजेट्स जो बन चुका है कोई राबता है उसका? नहीं, बेच दिए, ख़त्म होगी बात. ठीक है ना? अभी जो शय बिकने के बाद, कोई भी चीज़ बिकने के बाद उससे बनाने वाले से कोई राबता नहीं होता. अल्लाह ने ऐसा नहीं किया. जिस चीज़ को बनाया उससे मरबूत रहा. तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कॉन्सेप्ट है. मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ. इन मिन शय इन इल्ला यो सब बेहो बेहमदे. हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है. उस तस्बीह को वला किन ला तफ़कहू ना तस्बीह हूँ. उस तस्बीह को तुम समझ नहीं पाते. यानी हर शय, तो ये तो मालूम हो हर शय कह रही है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रू. हर शय ज़र्रा कह रहा है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रू. ये कह रहा है और उधर से क्या आ रहा है? वो मास तस्कुत मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा. ये जो पत्ता भी दरख से गिरता है अल्लाह उसे वाकिफ है. तो हाँ, एक ऐसी चीज़ को पेश कर रहा है दीन जो बिल्कुल दुनिया पेश ही नहीं कर सकती. प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर के दरमियान कोई राबता नहीं होता. अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है मरबूत, हर शय अल्लाह से मरबूत है. बेशक. और अल्लाह भी उससे मरबूत है. तो ये दुनिया को समझना जिसको इस दीन समझा रहा है एक चैलेंजिंग इशू है. लेकिन इंसान स्टेप बाय स्टेप चाहे तो समझ सकता है. सलावत पढ़िए मोहम्मद. टाइम ख़त्म हो रहा आज के लिए, मगर ये जुमले बहुत अहम हैं, बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिसका समझना ज़रूर. इसके बाद जो अहम बहस होती है प्रीडिस्टिनेशन एंड चॉइस. आया इंसान बनाने के बाद मरबूत है अल्लाह से या कि उसको आदत बना दिया गया? ये बहस है बहुत ही अदालत के लिए बहुत अहम बहस. समझे क्या चीज़ है? आया इंसान मजबूर है या मुख्तार? बोलिए, मुख्तार है. यही परेशानी है. आया इख्तियार रखता है इंसान? नहीं रखता. इनको नाम इनके फर्दा इनको नाम वो उनको नाम इन दलील इख्तियारस ऐ सनम. आप प्लान बनाते कल सुबह उठूंगा इस टाइम पे जाऊंगा ऑफिस को ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा इसका

0: आजादार घराने के यहाँ शोर शराबा करना अल्लाह को पसंद नहीं।
1: तुम तो खामोश रहो, अल्लाह तुम्हारे पाप को ना बख्शे। जब कारवा की हिफाजत करने का तुम पे दम नहीं था तो फिर जिम्मेदारी क्यों ली? जंग के वक्त तुम क्या कर रहे थे? कारवा बर्बाद हो गया।
0: क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जंगजू जिंदा वापस आया है? अगर मेरी मौत से तुम्हें सुकून मिलता है तो ये मेरी गर्दन तुम्हारे कदमों में है।
1: क्या तुम्हारी गर्दन हमारे लिए दाल रोटी बनेगी? मेरे शोहर ने एक उम्र इस घराने की खिदमत की, लेकिन उसे खबर नहीं कि उसकी मौत के वक्त सलामोपुर से ऐसे उसकी बीवी को महरूम रखा गया।
2: बहुत बेख्याल हो गए हैं जनाब औहद। महीना भी नहीं गुजरा कि हम सब भूख से मरने लगे हैं।
0: सब्र करें, गमों का तूफान रुक जाए फिर आप लोग आ जाएं। ये घराना भी आप ही की तरह आजादार है। हिम्मत रखें और अपने मुतालबे को वक्त पर छोड़ दें।
3: वक्त पर छोड़ दें? सब्र करें, मतलब आपकी बात समझे।
1: कौन सी इज्जत? हम इन्हीं की वजह से तो मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इन्हें यतीम कर गए जुनैद।
0: अल्लाह तुम्हारे शोहर की मगफिरत करे।
1: जाते वक्त ये तय नहीं पाया था।
0: क्या तय किया था?
1: जो कुछ भी था औलाद की यतीमी नहीं थी। कहो ना जान निकलते वक्त तुम उसके सिरहाने थे और मेरा शोहर अकेला नहीं था।
0: था?
1: उसके कातिल के साथ क्या किया?
4: मैंने खून बहाया लेकिन तुम्हारी इज्जत को खाक में मिलने नहीं दिया।
5: गलत किया तुमने, मेरी इजाजत के बगैर हालात और बदतर कर दिए।
4: मुझे देर से खबर मिली, मशवरा करने का वक्त।
5: मशवरे का वक्त नहीं था, तुमने पूरे कारवा और भाई के कत्ल का हुक्म दिया। मशवरा करने का हुक्म नहीं था? हा?
4: आप मेरा यकीन नहीं करते।
5: यकीन ना करते?
4: मेरा यकीन
5: तुम बोलते तो।
4: खुदा की कसम, आपको यकीन नहीं आता। रागिब की बात कहाँ और नईम की बात की हैसियत कहाँ? अगर जरा सी देर करता तो काम हो जाता। जनाब औहद, आपकी इज्जत की पासदारी का सिला मलामत और नाराजगी नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कोई बुरा हादसा पेश नहीं आया।
5: अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा पेश नहीं आया? क्या ये हादसा नहीं? ये हादसा नहीं? अल्लाह ने रहम किया कि नाइला जिंदा बच गई।
4: पहले से ही तुम्हारी बेटी को मारने का इरादा नहीं था, वो बेवजह डर गई है। बहुत पैसा खर्च किया है कि हर जगह ये खबर फैले कि राहजनों ने खून बहाया है। मैंने कहा था कि नायला के सिवा किसी पर भी रहम ना करें।
5: बकवास बंद करो।
4: अगर ऐसा ना होता तो मरने वालों में एक और इजाफा हो जाता।
5: लेकिन मैंने कुछ और सुना है। नायला, नायला, नायला यहाँ आओ।

0: कान खोल कर सुनो, मेरी बात सुनो और ठीक से जवाब दो। जब राहजनों ने कारवा वालों को मारना शुरू किया, क्या वो सिर्फ दूसरों को लूटना और कत्ल करना चाहते थे या तुम्हारी तरफ भी आए?
1: सब कुछ तो आप जानते हैं, मेरे पास कोई नई बात नहीं है कहने के लिए।
0: जरूरत पड़े तो 100 बार भी दोहराओगी उस दिन क्या हुआ।
1: कुछ तो ख्याल करो औहद, नहीं देखते हो कि ना चेहरे पे रंग है और ना जिस्म में जान है।
0: नायरा जान, बताओ उस रोज आखिर क्या हुआ?
1: मेरी जान, जानती हो कि दोबारा दोहराना तुम्हारे लिए तकलीफ देह है, लेकिन अगर मुमकिन है तो एक बार फिर बयान कर दो बेटी।
0: हिलाल, हिलाल,
2: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी गूंगी हो गई है, उसे इंसान की जबान समझ में नहीं आती है। तुमने उस रोज क्या देखा? किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की या नहीं? हनीफ के बेटे, तफसील के साथ बताओ, तफसील से।
2: जब बानों की करीज मारी गई तो उनकी बारी आई।

0: एक आदमी खंजर के साथ इतने नजदीक हुआ, बानों की चादर पकड़ी और जमीन पर गिरा दिया।
1: उनकी नियत कत्ल था या दिल में रोब और दहशत डालना था?
0: नियत जो भी थी, जिंदा रखना नहीं था। खंजर गले पर था कि मैंने तीर से मार दिया।
2: हनीफ के बेटे उससे पहले कहाँ थे? बनावटी बातें बंद करो। काश जबान चलाने और इधर उधर की उड़ाने के बजाय अपना काम ठीक से करते।
3: जख्म अभी भी ताजा है।
1: माजिद,
4: जी हुक्म करें।
1: राघीब के जनाजे के करीब एक चटाई बिछाओ, मैं अकेला बैठना चाहता हूं।
4: जी हो जाए।

0: खुदा की खुदाई की कसम, उस किस्से में पहली और आखिरी शर्त नायला की सलामती थी। मैं पागल नहीं हूं कि अपनी बहन को नुकसान पहुंचाऊं। कौन है ये जो ना जानता हो कि नायला आपके लिए अपनी जान से ज्यादा अजीज है? बाबा, क्या ये मुमकिन है कि मैं नायला के कत्ल की साजिश करूं?
1: बस बंद, तू मरो नहीं। एक उम्र तक मैं नायला की तरफ तुम्हारी नफरत भरी निगाहों को देखता रहा, खून के घूंट पिए और कुछ ना बोला। मुझे यकीन नहीं आता कि एक रोज मेरे सामने बैठकर इस तरह बेदर्दी से अपनी मेरी की हुई गलतियों को इनकार करोगे। उसे जान से मारना चाहते थे,
2: जान से मारना चाहते थे बदबख्त।
0: ना
1: तुम्हारे ख्याल में मैं नहीं जानता कि तुम खलवत में उसे कैसे पुकारते हो। बोलो कि तुम आज अपनी हया खो चुके हो, ये भी कहो कि तन्हाई में क्या पुकारते हो।
2: कनीज जादी,
1: तू हो तुम्हारी इज्जत पर, तुम्हें जरा सी गारत होती तो अपनी बहन को यूं नहीं पुकारते। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ।
0: मैं वो
2: दफा हो बाहर,
1: दफा हो जाओ।

0: जनाबे तमार, आप कहते हैं दूसरे के खतूत पर मोहर लगाओ, उसके लिए मेरा दिल राजी नहीं। दिल चाहता है खुद अलग एक खत लिखो।
1: ठीक है, खुद ही लिखो।
0: कुछ समझ में नहीं आता, अक्ल काम नहीं कर रही। ऐसा क्या लिखूं कि इमाम समझ जाए उनके आने का वक्त हो चुका है?
1: अगर उन्हें इमाम मानती हो और ये एतिकाद रखती हो तो जान लो कि इमाम तुमसे बेहतर जानते हैं कि कब जाने का वक्त है और कब आने का।
2: सलाम मिसान।
1: अलैकुम अस्सलाम।
2: एक सवाल था।
1: पूछो।
2: मिस्र में तिजारत का बंदोबस्त हुआ है, बच्चों और घर से दूरी का खौफ है, क्या करूं?
1: दुनिया की लज्जतें उतनी नहीं।

0: उस दिन से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली जब आपके दामाद ने रागिब के कारवां के हादसे की खबर दी कि मैं आकर माजरत करूं। माजरत चाहता हूं। हिलाल भी मेरे बेटे की तरह ही है, लेकिन अगर वो मेरा खून भी होता ना, फिर भी वही बात कहता और वो यही उम्मीद करता।
1: अब जब के दिलसोज बाप की मानिंद मेरे बेटे की मौत की आवाज रखते हो, तो फिर बाप की जिम्मेदारी को पूरा निभाओ।
0: तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? हिलाल अब बच्चा नहीं है जो अच्छे और बुरे में तमीज ना कर सके। क्या हमने उसे कम समझाया या कम नसीहतें की? हुआ क्या?
1: इस बार मेरा इसरार हालात के बेहतर होने की उम्मीद के सबब है। मुझे डर है कि इमाम आ जाए और इस सामिया का घराना तैयार ना हो।
0: क्या हिलाल के लिए कोई फर्क पड़ता है कि इमाम आए या ना आए?
1: क्यों फर्क नहीं पड़ता? सिर्फ इसके कान के करीब बैठकर बोलने की जरूरत है कि मुस्तकबिल हमारा है। मेरे बेटे के दिल में मोहब्बत अली है।
0: तुम्हारे बेटे के दिल में अली की मोहब्बत थी जब तक कि हिलाल तुम्हारे दस्तरखान पर रोटी खाता था, लेकिन जब से उसका दिल मजेदार निवालों का असीर हो गया है, हक बात को उसने तर्क कर दिया है और उस्मानियों के दस्तरखान का आदी हो गया है। ना उसके दिल में कोई मोहब्बत रह गई है और ना कान में कोई नसीहत जाती है।
1: मैंने कुछ लोगों से पूछा है, मेरे बेटे का माल मुश्तबा है, लेकिन उसने मेहनत की है और मजदूरी का सिला लिया है।
0: किससे सिला लिया है उसने? मैं नहीं कहता कि गैर शिया के साथ काम ना करो, लेकिन उस्मानियों के साथ नहीं। जो लोग उस्मानियों की दस्तरखान की तहारत का हुक्म देते हैं, वो सिफिन में कहां थे? सामिया, तुमने खुद देखा कि औहद और उसके खानदान ने किस तरह हमारे इमाम के सामने तलवार निकाली थी। मेरा गिला और दर्द उस्मानियों से है जिनका मुंह सिर्फ बुग्ज़े अली और औलादे अली के लिए चलता है। अगर सिर्फ अली को चौथा खलीफा भी मानते और उसका लिहाज रखते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन ये लोग अली को मुसलमान तक नहीं जानते हैं।
1: मेरी आंखें और दिल गमगीन हैं। क्या करूं फाजिल? जनाबे हबीब ने कहा है अपने बेटे की सिफारिश आपसे करूं, किसी काम में लगा दे। ऐसा कुछ करो कि उसकी अक्ल औहद के पास रहने को राजी ना हो।
0: आपकी और जनाब हबीब की बात सर आंखों पर। हिलाल से बोलें कि कल से वो काम पर आ जाए।

0: तुम जा सकते हो, तुम आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है?
1: अहमद बिन अब्दुल्ला।
0: तीर और कमान उठाओ। अहमद बिन
1: अब्दुल्ला,
0: उस सफेद निशान पर खड़े हो जाओ।

0: सफेद तीर तुमने अच्छी किस्मत की खातिर उठाया या फिर?
1: ये तीर हिंद की लकड़ी से बनाया गया है। ये ज्यादा तेज और हल्का भी है। ये बेमिसाल है। लेकिन ये तीर जंगली सुअर जैसे सख्त जान शिकार को करीब से मारने के लिए है।
0: उन दो आदमियों के साथ खड़े हो जाओ, अगला आ जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा जान?
2: खुदा की कसम हिलाल, खलीफा ने मेरा पूरा हिस्सा काट दिया है। बहुत ही मोहताज हूँ। अगर तुमने मुझे कबूल न किया तो फिर मैं क्या करूँगा?
0: मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घराने की जरूरत और परेशानी का इल्म है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मुहाफिज और कमादार के लिए बाजू की ताकत और जवान आदमी की जरूरत है। मैं शर्मिंदा हूँ।
3: इब्ने हनीफ,
0: सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम। जंग मुहाफिजों के चुनाव के बाद तुमसे कुछ बात करनी है।
0: इस तरफ चलें। कमान उठाओ और शुरू हो जाओ।
3: इनको चुनने के लिए इनकी जंग महारत को सिर्फ जांचते हो या फिर दूसरी शर्तों का होना भी जरूरी है? मिसाल के तौर पर जितना ज्यादा बेरहम अच्छा है।
0: ये इशारा था या फिर कोई नया हादसा पेश आया जिससे मैं बेखबर हूँ?
3: आज मेरे बाप के घर शोर शराबे में तुम क्यों चुप थे? तुमने जुनैद का नाम क्यों नहीं लिया? जुनैद तुम्हारा आदमी था, उसके खयानत को क्यों छुपाया? उसके गुनाह पर पर्दा डाला या खुद को मेरे बाप के गुस्से की आग से बचाया?
0: कुछ भी नहीं, उसके बाल बच्चों पर तरस खाया। मुझे हैरत है कि उस रोज आप अकेली नहीं थी। मैं भी देख रहा था और यकीन नहीं आ रहा था। अगर उसका नाम लेता तो उसकी बीवी और बच्चे बुरी बला में गिरफ्तार हो जाते हैं।
3: मेरी कनीस मुझे बचाने के लिए दौड़ी और वही हुआ जो तुमने देखा।
4: हिलाल,
3: मालूम नहीं किन पर तुम रहम खाते हो।
4: हिलाल,
0: बाबा जान, मैंने आपको बताया कि उस खानदान को छोड़ दो। उनको दुश्मनों से परेशानी इस कदर ज्यादा है कि फिलहाल वो सब किसी पर रहम नहीं खाएंगे। बाबा जान, आप चले जाएं तो बेहतर है।

0: चलो अब आंखें बंद करो, अब मुंह खोलो।
1: खट्टा था मामू।
2: मैंने क्या मजेदार शोरबा बनाया है। अम्मी दस्तरखान लगा दिया है, क्यों नहीं आती?
3: हाँ मिला खातून और इतनी मेहनत, अल्लाह हिम्मत दे बेटी।
2: खुदा की कसम भूख से मर गए हिलाल।
3: मैंने कहा था भूखी ना रहना।
2: हमने नाफरमानी तो बहुत की थी।
3: बिस्मिल्लाह। आज मैंने फाजिल से बात की है। फाजिल ने कहा कि पहला महीना तो कुछ नहीं, लेकिन अगले महीने से जो कुछ बस में होगा अदा करूंगा, ताकि हिलाल उसके मवेशियों की देखभाल करे और उसके माल की हिफाजत हो।
2: एक महीना तनख्वाह के बगैर?
3: देखो, तुम्हारे भाई का गुजरा हुआ कल अच्छा नहीं। अगरचे औहद की माल और दौलत के बराबर नहीं, लेकिन उसकी तनख्वाह पाक और बेशुबा है।
2: अल्लाह उसका भला करे।
3: तकदीर का कुछ पता नहीं, शायद किसी की माँ का दिल उसके बेटे पर राजी हो जाए।
2: सुन लिया माँ की जान, कल सुबह अव्वल वक्त बाजार में फाजिल की दुकान पर, अब अगर उस दरमियान एक चक्कर लगाओ और उसकी बेटी भी देख लो तो क्या बेहतर होगा?
0: बासित कहाँ है, नहीं आए?
2: पैगाम दिया है कि घर से आएगा। उसके नौकरों के दरमियान लड़ाई हो गई है। कहता था कि इमाम की आमद की खबर इस कदर तेजी से फैल रही है कि उस खबर ने पूरे शहर को घेर लिया है।
3: इस मर्तबा अलग ही बात है। लोग गली और बाजारों में खुल्लम खुल्ला इमाम की आमद के मुतालिक बात कर रहे हैं।
2: मेरे बच्चे का कदम बरकत वाला है।
3: उनकी शान और शौकत इक्तिदार और सल्तनत के दिन खत्म होने को हैं। वही हो उन पर जो उनसे उम्मीद लगाए हुए हों।
2: अगर इमाम आ जाए तो हुकूमत और इक्तिदार शियों के हाथ में आ जाएगा। तुम और बासित और हम सभी।
0: इस कूफा में अली ने 5 साल खिदमत की, आखिरकार क्या हुआ?

0: मेरी जान ख्वाब देख रही थी, मेरी जान कुर्बान।
1: बिल आखिर आ गई बेवफा।
0: जब कारवां की खबर फैली तो शहर में गोया आसमान सर पर गिर पड़ा। मैं बहुत घबरा गई थी, फिर तुम्हारी सलामती की खबर मिली।

0: मैं कई बार तुमसे मिलने के लिए आई, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया।
1: तुमको आने नहीं दिया?
0: कहा कि नायला खातून किसी से मुलाकात नहीं कर सकती।
2: तुम्हारा मसला रिश्तेदारों, अजीजों और दूसरों से बिल्कुल अलाइदा है, तुम्हें मालूम नहीं।
0: आज जब तुम्हारी माँ ने बुलावा भेजा तो मेरी जान में जान आई।
2: आखिर अपना काम कर लिया, आजादारी कर रहे हैं, फिर तुम्हें मुझे समझने के लिए भेजा है।
0: मैं जानती हूँ कि तुम दुल्हन के लिबास के बजाय सियाह लिबास पहनने के लिए मजबूर हो। तुम्हारा दिल हरगिज रागिब के साथ नहीं था। उसकी आमद की हजार दास्तान थी और गया भी तो यूं, अपने बाप के सफेद बालों की खातिर, शमीम की खातिर ही सही, बस एक दिन के लिए उनकी ख्वाहिश कबूल कर लो।

0: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
1: मैं शर्मिंदा हूं कि तफसील से बातों को नहीं बता सका। हादसे का खौफ इस कदर ज्यादा था कि मेरे जहन से बात निकल गई थी।
2: जनाब कमांडर, क्या चीज तुमने भुला दी? हाँ, क्या तुमने जुनैद का हाथ पकड़कर उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी? हमने उसे अपने मुहाफिजीन में जगह दी तो इसलिए कि तुम पर भरोसा किया था।
1: मैंने उसकी कमानदारी की जिम्मेदारी ली थी, उसके ईमान और दिल की सच्चाई की नहीं। अब अगर इजाजत दें तो मैं देखता हूं कि माजरा क्या है। शायद उसकी बीवी कुछ बताए और कोई गिरह खोले।
2: झूठा कहेगा
3: कतलोर, गारत का हुक्म देने के अलावा मामला दूसरों के गले डालना भी आता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हिलाल कितना खुश ख्याल है। वह ख्याल कर रहा है कि कातिलों का पता लगाएगा। बेचारा नहीं जानता कि असली कातिल उसकी आंखों के सामने है और उसने इस कत्ल का एतराफ कर लिया है।

0: बहुत मजेदार था, सलामत रहो।
1: अब बोलो।
0: क्या बोलूं?
1: पेट भर गया फिर भी याद नहीं आया। जान भी कुर्बान कर दो तब भी गद्दार रहोगे।
0: इस तरह से मुझसे बात मत करो, समझे?
1: पहले अच्छी तरह सुन लो, फिर मेरे सवाल का जवाब दो। अगर जवाब ना मैं दिया तो तुम यहां से अकेली जाओगी। तुम्हारा शौहर शाम की तरफ जाने से पहले किसके साथ उठता बैठता था?
0: मेरा शौहर ज्यादा बात नहीं करता था, अल्लाह की कसम।
2: झूठ मत बोलो।

0: ये लो खाओ खाओ।
1: इस मसले को इस तरह हल करोगे? ऐसे शोर शराबे से इतना भी न सोचा कि उल्टा खौफ से जबान बंद हो जाएगी।
2: इसके खबीस शौहर ने तमाम नक्शों को बर्बाद कर दिया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा।
1: चुप रहो, हमारे इर्द गिर्द नौकरों में कम जासूस नहीं छोड़े गए हैं। फालतू चीक पुकार से उन्हें होशियार न करो।
2: मेरे बेवकूफ बाप को यकीन है कि उसकी बेटी के कत्ल का हुक्म मेरा था। ये भी नहीं सोचा कि कौन गधा बाप की अजीज तरीन जान पर तलवार उठाता है। मैं हिलाल भी पै दर पै आग भड़काता जा रहा है।
1: खौफ ने तुम्हारे होश उड़ा दिए, तुम्हारी मीठी जबान ने सब कुछ उगल दिया और इस तरह सब कुछ बर्बाद कर बैठे।
2: हाँ, हाँ, मैं नहीं कहा, और बहुत अच्छा किया कि कहा। अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो, दिमाग खराब कर रही हो। अगर मुझे पता चल जाता कि किसने जुनैद के कान भरे और उसे नायला को कत्ल करने का हुक्म दिया, काश मैं ये समझ जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इसका मुंह खुलवाना
1: नहीं,
2: इसको मुंह खोलना ही पड़ेगा।
1: महशर बर्पा करने के बजाय चुपचाप इस मुश्किल का हल तलाश करो। जुनैद की बीवी से बात उगलवाना और हिलाल को जलील और ख्वार करना मेरा काम, अहद का दिल जीतना और उसे एतिमाद में लेना तुम्हारे हवाले।

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: ये रातें हमारी लश्करगाह में क्या कर रहे हैं?
2: शायद मुख्तार के जुल्म की वजह से हमारी फौज की पनाह ली है इसने।
1: अफसोस है क्या हाल बना रखा है इसने।
2: देख तो रहे हो, हमारा जासूस है, पकड़ा गया होगा।
3: ये आँख कान और ज़बान का हैवान आखिर हमारी किस पहेली का जवाब है? काबिले इलाज नहीं है, मार डालो इसे। इसके कराने ने सबको

0: खामोश क्यों है बात? कुछ तो बोलो। तुमने हमारे दुश्मन को कैसा पाया?
1: जख्मी और सख्त मिजाज मुख्तार और उसके मानने वाले जुबैरी खलीफा को झूठा, रियाकार और वादा खिलाफ जानते हैं। उन लोगों ने खलीफा के इंतकाम हुसैन के नारे को बहाना बना के चारों तरफ ये ढंडोरा पीट दिया है कि ऐ लोगों सुनो, इससे बढ़कर झूठ क्या होगा? जो खलीफा कल तक इंतकाम हुसैन का दावा रखता था, आज वो कातलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गया है और हमारे खिलाफ लश्कर कशी कर रहा है। मक्के में हाशियों के साथ बुरा सलूक और वो भी खलीफा के हुकुम पर एक बड़ी सनत बन गया है। ये सारी बातें इराक के लोगों को खलीफा के खिलाफ कर रही हैं और इसी बात ने हमारे काम को मजीद दुश्वार बना दिया है।
0: बज़ाहिर आपके गैर मरई तीर पत्थर पे जा लगे हैं, गोया मुख्तार के हाथों में आसाए मूसा है जो अजदहा बन गई है और तुम्हारे जादुई सांपों को डस रही है।
2: मुख्तार कोई छोटा हरीफ नहीं है अमीर, वो सियासत के मैदान का जादूगर और मैदान जंग का मोचिज़नुमा कहलाया जाता है। वो हमारी एकाध साजिश

किसी तदबीर से तो मगलूब नहीं हो सकता ना, मगर फिर भी मैं नहीं समझता कि मेरे तीर पत्थर पर जा लगी हूं। अभी तक मुझे बिन वहाब से काफी उम्मीद है, जरा सा हौसला और सब्र चाहिए।

0: देखा तुमने मोहल्लब, देखा ना कि इन हरामजादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
1: क्या तुम्हें वाकई ये तवक्को थी कि ये लोग बगैर चूं चुरा के मैदान में चले जाएंगे?
0: तो फिर ये लोग हमारे साथ क्यों हैं?
1: क्योंकि उन्हें आपकी हिमायत की जरूरत थी।
0: कम हिमायत की है क्या हमने उनकी?
1: नहीं, जितनी हिमायत आपने की है उसके मुताबिक ये लोग आपके लश्कर में आपके साथ खड़े हैं। इनके खून की कीमत नहीं मैदान में उतर जाएंगे।

0: बैत करने वालों, ऐ खलीफा मुबारक के वफादारों, वापस लौटते हैं। हमारे साथ सेना की गई है, वापस चलो, पीछे हटो।
1: इनका पीछा मत करो।
2: जी अमीर।

0: जहाज के लिए आए हो या तमाशा देखने?
1: फिलहाल तो हम लोग जहाज का तमाशा देखने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी शुजाअत देखकर बहुत मजा आया।
0: सही, तो फिर हमले की रजामंदी क्यों दी थी?
1: इस चूचरा का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। जब कभी नक्शा खींचने वाले ने सवाल पूछा, उनका जवाब मैं दे दूंगा।

0: मजाक उड़ाया है तुम लोगों ने हमारा।
1: अपने गुस्से
0: चुप रहो मोहल्लब, तुम और तुम्हारी पेशनगोइयों की इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर। जंग का कोई कायदा और कानून होता है। हमारी आज की जंग का नाम मजाक था। उस शिकारी का मजाक जो शेर को समझे बगैर शेर को शिकार करने चला गया और उसे देखते ही उसकी हैबत से खौफजदा हो गया और भागकर वापस आ गया। जंग शुरू करने का मतलब होता है पंजाजमाई। आज आप हजरात की बेहिफाई की वजह से बिन कामिल शाकरी ने इबाद इब्न हुसैन को मैदान में हरा दिया।
2: खुदा गवाह है कि मैंने जरा बराबर भी बेवफाई नहीं की। ये नाचीज आपकी दरायत के तहत शेर को पहचानने पर मामूर हुआ था और उसकी हैबत और कुदरत का इल्म रखते हुए मैदान में गया और अपनी तवानाई के मुताबिक आगे बढ़ा और कारी जर्ब लगाई, मगर आगे पीछे और दाएं बाएं जानिब से मेरी हिमायत होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ा।
0: इन हजरात से पूछो कि तुम्हारी हिमायत क्यों नहीं की। उन्होंने कहा है ये मनहूस शबस।
3: ये शबस आजकल शबस नहीं है, सभी है।
0: अच्छा, क्या ये तुम लोगों की नई चाल है? कल तक तो शबस तुम लोगों का जहीन तरीन सियासतदान था। ये कैसा साय है कि हजरात उसके इशारों पर चलते हैं और उसकी इजाजत के बगैर पानी भी नहीं पीते हैं? शबस अगर इबाद की हिमायत पर नहीं गया तो तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया?
4: हम जब चलने के लिए तैयार हुए तो हमने जंग रोकने का नकारा सुना और खामोश खड़े रह गए।
5: ये झूठ है भाई। इबाद के हमले के दौरान मैं इन लोगों को बगौर देख रहा था। इनका जायजा लेने के लिए मैं शबस के कुछ करीब हुआ, मगर ऐसे करीब हुआ कि ये लोग मुझे ना देख सकें। मैंने देखा ये लोग इबाद की हिमायत के लिए आपस में मशवरा कर रहे थे। शबस का कहना था कि ऐसी जगह खड़े हों जहां से देखे ना जाएं।
0: मुझे मालूम है जाफर, मालूम है मुझे। शबस के पिछले चंद दिनों से इस चूहे बिल्ली के खेल ने यह साबित कर दिया है कि उसका हमारे लश्कर में होना एक साय की मानन है।

0: वो मौजूद है भी और नहीं भी। उसकी सियासत इन लोगों में भी सरायत करती जा रही है। अब ये लोग दूर ही खड़े हुआ करेंगे और जंग का नजारा देखेंगे और अपने दिल में हम पर और हमारी हिमाकतों पर कहकहा लगाकर हंसेंगे। कितना अहमक गधा है। हम इस पर सवारी करते रहेंगे और इस कौम के पीछे चलते रहेंगे। मुमकिन है देर से मंजिल को पहुंचे मगर सही सलामत पहुंचेंगे।
1: क्या मैं भी इस मिसाल की जद में निशाना बन रहा हूँ?
2: बात का रुख मत मोड़ो बेअदब।
1: बदतमीज तुम हो जो अमीर की मौजूदगी में उनकी जगह बात कर रहे हो शहजादे। मैंने अमीर से पूछा है तुमसे नहीं।
0: इब्ने होर, मोहल्लक की तदबीर के मुताबिक आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था। बेहतर यह होगा कि तुम चुप रहो और अपनी दुम को इस गिरोह की दुम से ना बांधो।
1: जी अमीर।
0: मैंने हुक्म किया कि चुप रहो ना के चले जाओ। कान खोल के सुन लो बिन अशस, और तुम भी बिन हज्जाज। आज बनी जुबैर की हुकूमत को तुम जैसों और तुम्हारे उस अकले कुल शबस को पना देने और तुम लोगों पर भरोसा करने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुम लोग वो अफराद हो जिनके हाथ कोहनियों तक अहले बैत रसूल के खून से आलूदा है, फिर भी तौबा का दामन थाम लिया। बहुत खूब। मेरे बड़े भाई जनाब खलीफा और मैंने इस बदनामी को कबूल किया ताकि रसूल अल्लाह की सुन्नत की पासदारी करें। अगर अब भी बाज नहीं आओगे और पहले की तरह चालाकी और मक्कारी दिखाओगे तो मेरे पास इसके सिवा और कोई चाराकार ना होगा कि तुम लोगों को मुख्तार के हवाले कर दूं और इस तनाजे को खत्म कर दूं।
3: अमीर, कुछ तो पर्दापोशी कीजिए।
0: मोहल्लब, ये वाकया कोई सियासतबाजी नहीं है जो तुम जैसों की जहानत से हल की जाए। इस गिरोह ने लश्कर की आंखों के सामने हमसे खयानत की है, वो भी उस शख्स के हुक्म पर जो इनके सरों पर साया है और मेरी नजर में भेड़िया है। जब हमसे पना मांगने आया तो सर से पैर तक शर्मिंदगी और जिल्लत से भरा हुआ था। हमने दिलसोजी और फर्ज के तहत उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, मगर आज वो इन हजरात की गर्दनों जितनी मोटी दुम निकाल के हिला रहा है। वो खुद तो सामने आता नहीं, साथ ही इनकी हिमायत में भी रुकावट बन रहा है। क्या यही इंसाफ है?
4: जनाबे अमीर, आपको गुस्सा होने का हक है और फैसले के मामले में इंसाफ का दामन छोड़ने का भी। शबस को इबाद की हिमायत नहीं करनी थी। मैंने इबाद की परेशानी के पूरे दौरानिये में उसे मनाने की पूरी कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। बहरहाल कल भी जंग होनी है। कल मैं मैदान में जाऊंगा और आप देखेंगे कि मैं किस तरह मजूसियों के लश्कर का कला कमा करता हूँ।
0: देखते हैं तुम क्या करते हो। जा सकते हैं आप।
5: आज आप लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि अगर बनी जुबैर के पास जरा सी भी अकल मौजूद हो तो उन्हें अपना साजो सामान जमा करके चले जाना चाहिए चरवाहों वाले मशगले की तरफ।
6: अमीर, ये बईद है कि इन्हें भेड़े चराने का काम आता हो। अलबत्ता ऊंट चरा सकते हैं। अब तक जुबैर के ऊँटों का रेवड़ बसरा में काफी मशहूर है।
5: जरबुल मसल में मुनाकिशा नहीं होता। अब वो लोग चाहे भेड़े चराएं या फिर ऊंट, ये तो तय है कि ये लोग हुकूमत और सियासत के अहल नहीं हैं।
7: ये नुक्ता महले फिक्र है और ऐसा नतीजा निकलना जंग के नतीजे पर असरअंदाज होता है। अमीर, आप इस नतीजे तक कैसे पहुँचे?
5: आज तक मैं ये समझता था कि मोहल्लब का मुसब की फौज में मौजूद होना बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार करा सकता है। उनकी आज की आराइश से ये पता चलता है कि मुसब के सरदारों में से हर एक ने अपनी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। इबाद को मैदान में भेज रहे हैं, वो भी उसकी हिमायत के बगैर। यानी ये उनकी मुश्तरका तदबीर नहीं है। हम इसी कमजोरी के नुकते से दुश्मन की गर्दन दपोच सकते हैं। अबू उमरा, परेशान हो मेरे भाई?
8: मेरी परेशानी की गिरा को दिल की आंखों से देखिए अमीर। मैं अब तक उन भाइयों की जानिब से कुड़ रहा हूं जो ये समझते हैं कि मैंने उनके मुतालिक जुल्म किया है। मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब मैं बीच मैदान में खड़ा होऊंगा।
5: कल भी कारनामे दिखाने का दिन है। तुम मुश्किल दिनों के लिए बचाया हुआ खजाना हो। میں ابو عمرہ کے تجربات اور جنگی توانائی پر شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔

0: ये लोग डर रहे हैं कि हम भाग जाएंगे।
1: कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। मुझे मुख्तार की फिक्र हो रही है मेहरान। इन लोगों की मुख्तार से बेहद सिर्फ कौम और कबीले की बुनियाद पर है। आज हम ये साबित कर देंगे कि ईरानी की मुख्तार से बेहद ईमानी है।

0: रहा है, मगर ये पैदल क्यों आया है? मुमकिन है ये कोई चाल हो,
1: शायद, और शायद मुहल्लब के गैर मरे तीर निशाने पर लग गए। बहरहाल इनके पीछे की जानिब ज्यादा ध्यान रखना।

0: बताया कर रहे हो? मेरी बहन से शादी की शर्त चले अब उभरा है।
1: ये तो इंसाफ नहीं है।
0: तुम चाहो तो मंजूर ना करो।
1: कोई बात नहीं, अब आपकी नजरों की तेजी अबू उमरा की तलवार से ज्यादा खतरनाक है।

0: तुमने तो सिफेन के दिनों का सा रूप धार लिया है कियान। तुम्हें याद है हम कितने बेचैन थे मैदान जंग में जाने के लिए?
1: अच्छी तरह याद है अमीर। आजकल मैं फिर से इतना बेचैन हो गया हूँ कि गोया मेरे अंदर का जंगजू मेरी तलवार पर टेक लगाए है और मेरे घोड़े की जीन पर सवार बैठा है।
0: तुमसे क्या मख्फी है, आजकल मैं भी किसी पिंजरे से आजाद हुए परिंदे की सी हालत रखता हूँ। उस मनहूस औलाद से लड़ने के लिए बजाते खुद बेताब।

0: अम्मी, मजबूरी है, आपको अपना दिल मारना ही होगा। आपको कुफे में ही रहना चाहिए। अगर आप मैदान में गए तो मुहल्लब समझेगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे, और यह हमारे हक में ठीक नहीं होगा।
1: मैं जानता हूं कि आन तुम ठीक कहते हो। मुझे मजबूरन कुछ मदद के लिए अगरचे छोटी ही क्यों ना हो कूफे में रहना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम फौज के सिपहसालार रहो।
0: गुस्ताखी की माफी चाहता हूं अमीर, आप एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए। हमारा मुकाबला एक मुझी दुश्मन से है। मुहल्लब को सिर्फ ये खबर मिलने की देर है कि हमारी फौज का सिपहसालार एक ईरानी है, फिर वो अरब और अजम का खेल शुरू कर देगा और फौज को दरहम बरहम कर देगा। इजाजत दें कि एक गुमनाम सा सिपाही रहूं जो आखिरी सांस तक अपनी बेहद पर बाकी रहे।
1: मरहबा क्यान, तमाम तारीखियां हमेशा से दिल की रोशनी के आगे मकलूब रही हैं। तुम्हारी ये रोशन दिली को या वो दुर्र नायाब है जो तुमने दर्द के दरिया की गहराई में पाई है। मुबारक हो तुम्हें।

0: माफ कीजिएगा अमीर, मुझे आपके हुक्म के बगैर हिलना नहीं चाहिए था, मगर अपने दिल की घबराहट के आगे हार गया। क्या हुआ है? ज्ञान पैदल क्यों गया? मैदान से कोई खबर क्यों नहीं आती?
1: जरा हौसले से काम लो बंदा खुदा, अबू उमरा अभी तो मैदान में गया है, उसकी कामयाबी की इत्तला करीब आने वाली है।
0: वो पैदल क्यों गया है?
2: सिर्फ एक अहमकाना सुएज़न की वजह से। मुझे भी फिक्र होने लगी बिन कामिल, तुम और तुम्हारे आदमी अबू उमरा की मदद को फौरन जाओ।
0: जी अमीर।

0: ये तुमने अपने साथ क्या किया मेरे भाई?
1: अबू इसहाक की खबर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही मुनाफिकों के हाथों मغلوب हो जाए।
0: लेकिन तुम क्यों ज्ञान? तुम्हें तो अरब के मुतासिब मुनाफिकों की जहालत का पता था, तुम क्यों उनकी माकद के आगे तस्लीम हो गए? घोड़े से क्यों उतरे?
1: तुम्हें याद नहीं मालिक अश्तर ने सिफैन में क्या किया?

तुझे ढूंढने जाऊं कहां। मकतल में शब्बीर पड़े हैं, तू भी कब्र में सोया है, तू भी कब्र में सोया है। मकतल में शब्बीर पड़े हैं, तू भी कब्र में सोया है, तू भी कब्र में सोया है। अब कह

जावा दे, कहीं बांधो नहीं, थोड़ी दया। गेम करिए, चार कोल, घना कोल, चार कोल। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, चारे चार नी अंदर इस्तंजिलु नो शब्द छे, એટલે નાઝિલ કરો ઇસ્તંઝિલુ. એક છે ઇસ્તંઝિલુ રહમા બિઝિક્રિલ્લાહ, ઇસ્તંઝિલુ રહમા બિલ

चीफ जस्टिस बन जाओ, उसने कहा मैं नहीं बनूंगा। उसने कहा शहजादों के तुम उस्ताद बन जाओ, उसने कहा मैं नहीं बनूंगा। फिर एक दफ़ा वो जाके दस्तखान पे बैठा और जब खा पी के फारिग हुआ उसने कहा भाई मैं दोनों पोस्ट लूँगा, दोनों पोस्ट लूँगा, पूरी पूरी तनख्वाह लूँगा। पहले कह रहा था बन भी गया तो मैं तनख्वाह नहीं लूँगा और ये नहीं करूँगा, फिर कहने का पूरी पूरी तनख्वाह लूँगा। और उस पूरी तनख्वाह के नतीजे में आखिर में वो कहता है भाई मैंने दीन बेच के लिए, मुझे पता है मैंने दीन बेचा। बस ये जो अंजाम है ना, ये बहुत वहशतनाक अंजाम है कि इंसान एंड में जाके एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसको पता होता है कि मैंने काम ख़राब कर लिया है। उससे पहले ही होशियार हो जाए, आप अपने उसूलों के ऊपर रहें, अपने जाबितों के ऊपर रहें। दुनिया इज्जत देती है दे, नहीं देती ना दे, आप उससे परेशान ना हो। अल्लाह ने आप अच्छे काम की बका का वादा किया हुआ है कुरान करीम में। अम्मा मा यनफाउन नास फयम कुसुफिल अर्ज़, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा वो ज़मीन के ऊपर बाकी रहेगा। अम्मा ज़बत फैज़ हब जुफान, शुरू में फरमाया था कि जो झाग की तरह होगा वो खुश्क हो जाएगा, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा वो ज़मीन के ऊपर बाकी रहेगा। और आप अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अहले बैत के मानने वाले हैं, वो इमाम जिनकी ज़्यादातर ज़िंदगी जिंदान में गुजरी है वो भी मासूम है, जिनकी औलाद में, ये अजीब पहलू है मौला सातवें सरकार का, मौला सातवें इमाम का, दुरूद भेजेगा उनके ज़ात ग्रामी पर। मुहम्मद आले मुहम्मद वाजिल फरज। ये पिछले साल कोई देख रहा था मैं क्लिप, उसमें बहुत अच्छी ये बात कही गई थी, उसको मैं एक दो दफ़ा दोहरा चुका हूँ। मौला सातवें इमाम की औलाद के लिए सिवाय मौला आठवें इमाम के मशहूर ये है कि किसी की शादी नहीं हुई थी, और ये सब ईरान और इराक के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मदीने से तशरीफ़ ला कर मुस्तकर हुए। सही है। अब उनके वालिद जिंदान में, और जो सातवें इमाम के फर्जंद थे वो तूस बुलाए गए, और थे महल में भी थे तो जिंदान में ही थे। सही है। और मौला आठवें इमाम के भाई बहन उनकी मदद करने की खातिर अपने इलाके से निकले, मदीने से निकले, ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में जाकर रुक गए, जिनमें बीवी जो कुम में तशरीफ़ फरमाएं वो सर फहरिस्त। और ये भी एक अजीब बात है कि दुनिया इस्लाम के अंदर तशैयों में, इमामजादों में, यानी गैर मासूम के अंदर सबसे बड़ा हरम एक खातून का है। ये बड़ी अजीब बात है, तमाम गैर मासूमीन के अंदर सबसे बड़ा हरम इस वक्त बीवी का है। ये अल्लाह के दीन में औरत के मकाम के ऊपर बहुत बड़ी दलील बन रही है कि जो हमारे यहाँ ये उल्टे सीधे इतराजात कर रहे हैं ना कि भाई निस्फ आपके यहाँ इरासत मीरास क्यों है, जाके देखो बीबी के रोज़े के ऊपर एहतराम देखो कि कौन सा आयतुल्ला कौन सा मर्ज तकलीद नहीं आएगा वहाँ पर। सही। तो अच्छा, वो मौला सातवें इमाम की औलाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तशरीफ़ लाए, मसलन ईरान के एक शहर में बीबी तशरीफ़ लाएँ, दूसरे शहर के अंदर दूसरे गए, तीसरे शहर, चौथे शहर, पाँचवें शहर। अच्छा, जब ये यहाँ पर आए तो इनके पास लश्कर था नहीं, कितने कितने लोग साथ आए थे, यकीन माने जैसे हमें पता है रिवायतों के मुताबिक किसी के साथ 25, किसी के साथ 30, किसी के साथ 10, इस तरह से लोग आए ये। और की पॉइंट्स के ऊपर जाकर तशरीफ़ फरमा हुए, सिर्फ एक नस्ल के अंदर ये दोनों मुल्क तब्दील कर दिए, एक नस्ल में। इलेक्ट्रॉनिक एज नहीं है ये, आइसोलेशन का ज़माना है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और दो मुल्कों की बात है, दो मुल्क तब्दील कर दिए एक नस्ल के अंदर। ये क्या सीखिया। और ना पैसा हाथ में है, ना फौज हाथ में है, और ना कोई सपोर्ट हाथ में है, अकेले अकेले। ये मौजज़ा है माशरती तब्दीली का, इसको कैसे अंजाम दिया। और इनमें से अक्सर सख्त तरीन औकात के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, सख्त तरीन दौर गुजारे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के। लेकिन क्या है कि उनका असर इतना पायदार था कि बाज का असर 500-500 साल के बाद नज़र आया, किसी का असर 1000 साल के बाद नज़र आया। सही है। ये दीन खुदा है, दीन खुदा में आप जल्दबाजी नहीं करें। अगर इंसान सौले हो तो उसकी कब्र भी 500 साल के बाद लोगों को परहेजगार बना देती है। आप जल्दी नहीं करें। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई डिमांड नहीं की खुदा से कि खुदा हमारी ज़िंदगी में ये तब्दील हो जाए, नहीं हुआ तब्दील, कोई बात नहीं।

आपके हत्ता आंसुओं को देखने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है, आपके जो दिल के अहवाल हैं वो भी उनको पता है। अगर आप में से यहाँ कोई बैठा हो, एक भी आंसू ना बहाए, कुछ भी ना करे, और उसके दिल में हुब्बे अहले बैत की वजह से गम आ रहा हो, ये भी वो जानते हैं, ये हमारे गम में गमगीन हुआ है। जितना आप उनके गम में गमगीन होंगे उतना वो आपके गमों को दूर कर देंगे, आपके गम को ज़ाया नहीं होने देंगे। मौला आपका शुक्र, आपका एहसान कि आपने हमें अपने गम में रोने की एक तरबियत दे दी। हमें पिछली मजलिस में मसाइब पढ़ के आया, मामूलन कोशिश करता हूँ कि पिछली मजलिस में जो मसाइब पढ़ूँ वो यहाँ ना पढ़ूँ, लेकिन पिछली मजलिस में मसाइब पढ़ के आ तो गया लेकिन मेरा दिल नहीं भरा है अभी, वो मसाइब दोबारा पढ़ना चाह रहा। मैंने पिछली मजलिस में मौला अबुल फजल के मसाइब पढ़े, दिल नहीं भरा। मौला अबुल फजल का बड़ा मकाम है, हमारे पास रिवायत मौजूद है कि मौला छठे इमाम फरमाते हैं मेरे चचा अब्बास का जन्नत में वो मकाम है, दुनिया के सारे शहदा चचा अब्बास के मकाम पे हसरत करते, मौला अबुल फजल का वो मकाम है। आज तो ये मकाम जाहिर कोई वजह है, कोई मकाम होना कोई सबब होता है। हमारे पास एक सही रिवायत है, सही रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है, ये बड़ी अजीब रिवायत है। मेरा नहीं ख्याल करबला के वाक़े में ऐसी कोई चीज़ और कहीं हो। जब शब आशूर सैयदुश्शहदा ने मौला अबुल फजल से कहा कि भैया जाओ और एक रात की मोहलत लेकर आओ, सैयदुश्शहदा जानते थे कि अबुल फजल के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल काम था कि वो किसी लईन के पास जाए उमर साथ जैसे के पास, उससे कहें एक रात की मोहलत दे दे, लेकिन अबुल फजल ने कहा सम अन वतन, जो आप कहें मैं उस पर अमल करूंगा। तो जब जाने लगे, आज ही तो मौला अबुल फजल की शिनाख्त के लिए ये जुमला है, जब जाने लगे तो सैयदुश्शहदा ने कहा जाओ मेरे भाई, मेरी जान तुम पे कुर्बान। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है अजीजो? इमाम हुसैन फरमा रहे जाओ अब्बास मेरी जान तुम पे कुर्बान। ये कैसा मकाम है, ये कैसी मंजिलत है। अबुल फजल का मामला कुछ और है, उनका मामला कुछ और है। मौला अबुल फजल के लिए जो कुछ सैयदुश्शहदा ने कहा, मुझे लगा अगर गम को मुकाबला करें तो सिर्फ मौला अली अकबर के मौके पर ऐसा कोई जुमला कहा। आपको याद है जब मौला अली अकबर के लाशे पर पहुंचे तो फरमाया वो अला दुनिया बाद खिलाफा, अकबर तेरे बाद दुनिया पे खाक हो। जब अबुल फजल के आलम को लड़खड़ाता देखा तो फरमाया अलान इन कसरत जहरी, अब मेरी कमर टूट गई। सैयदुश्शहदा की कमर टूट गई। मौला अबुल फजल के मसाइब में बड़ी अजीब जगहें हैं, बड़ी अजीब जगहें हैं। आपने बचपन से सुनी है, न मुझ में ताकत है न मुझ में सलाहियत है उन मसाइब को इस तरह पढ़ने की, लेकिन आज तो मैं तालिब इल्म होने के नाते अगर मसाइब में से किसी हिस्से को इंतखाब करूं तो आप खुद बताइए उससे बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है जहां बीबी सैयदा ने कहा कि मेरे बेटे के मसाइब पढ़ो। वो कौन सी जगह है? बीबी ने फरमाया मेरे बेटे के चाहने वालों को बताओ उसके सीने में तीर लगे हुए थे, उसके बाजू कटे हुए थे, वो सुलझना से गिरा तो कैसे गिरा होगा। जिन मसाइब को बीबी सैयदा फरमा रही हो कि ये बताओ। ऐसे ये एक मसाइब का हिस्सा।

एक और रिवायत बस और अर्ज करूंगा। एक रिवायत बड़ी अजीब रिवायत है। एक जाकिर ये रिवायत पढ़ा करते थे और बड़ी सख्त रिवायत है, बहुत सख्त रिवायत। तो बाज़ उलमा ने उनसे कहना शुरू कर दिया कि देखो यहां पर अबुल फजल के चाहने वाले बैठे होते हैं, इनको इतना मत रुलाओ, तुम ये मसाहिब का हिस्सा मत पढ़ा करो। तो गोया उन्होंने भी समझा, उन्होंने कहा कि शायद ना पढ़ूं बेहतर है।

0: नाइला, माँ की जान उठो, ख्वाब देख रही हो क्या?
1: जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, मेरे सामने वही मंजर आ जाता है। मैंने ख्वाब देखा कि
0: बस गुजर गया। इस ख्वाहिश को किसी से बयान

0: मत करना।
1: डर रही हूँ।
0: किस चीज से मेरी बेटी? तुम तो अपने घर में बैठी हो और मेरे पहलू में हो।
1: मौत से। जोसमन उस दिन के बाद से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जब कुछ लोगों को मेरी नजरों के सामने ज़बह कर दिया गया।
0: तुम पे फिदा हो जाओ। मगर क्या अब तक ऐसा हुआ है कि बाजार के बीच तुम्हारे जिस मुजान की कीमत लगाई गई हो, बेचा गया हो, तुम्हें कनीजी में ले गए हो, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम यहाँ हो, हमारे पास हो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा कल गुजर चुका है, तुम्हारा भी गुजर जाएगा। वक्त लगता है मगर गुजर जाता है। जरा उठो और ये पानी पी लो।
1: काश दिन भर कोई निगाहबान इस कमरे के बाहर पहरा देता।
0: तुम्हारे अब्बू से कहूंगी। मगर ऐ काश कि तुम भी जरा घर से बाहर निकलो, जरा बाजार और गली में जाओ, अपनी तबीयत को सुधारो बेटा। आज होना ये था कि तुम्हारे बाबा नईम को तिजारत खाने में उस मरहूम की जगह मालिक को मुख्तार बना दे। बेटा तुम्हें अब अपनी तबीयत पर ध्यान देना होगा।
1: तुम मेरे पास रहोगी?
0: अच्छा ये होगा कि मैं चली जाऊं। मगर तुम चाहती हो रुक जाऊं तो। नायला, अगर मैं औहद, शमीम और हजारों निगाहबान भी तुम्हारे पास रख दूं, जब तक तुम खुद न चाहोगी, गम और डर की परछाई तुमसे दूर नहीं होने वाली। बेटा डरो, रो, मगर जान लो कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना होगा।

0: Salam.
1: Ibn Hanif. तुम मुझे जंग करने के तरीके सिखाने वाले थे, आज से शुरू कर दें।
0: आज
1: ज़ोहर की अजान के बाद जुनूब के बागों में

0: जनाब औहद है
1: जी हैं काम क्या है
0: उन्हीं से बताऊंगी
1: अगर कोई काम है तो मुझे बताइए
0: बोला ना उन्हीं से
1: बताऊंगी बाहर निकलिए
0: जनाब औहद
1: बाहर निकलिए यहाँ से
0: जनाब औहद छोड़ो मुझे जनाब औहद
1: मेरी बात समझ में नहीं आ रही चलिए बाहर निकलिए यहाँ से निकलिए अरे आप जाती क्यों नहीं है
0: शादी नहीं की काले कपड़े उतार लो चूंकि तुम्हारे दामाद ने जहन्नम का रास्ता अपना लिया है और तुम्हारी दुनिया जन्नत में बदल गई छोड़ो मुझे छोड़ो खुदा ने मेरे बहन रहना इस खानदान ने मेरी शोहर की दुनिया भी बर्बाद कर दी और आखिरत भी
1: मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कीजिए
0: पहले मेरे शोहर का भाई रागिब के कारवा की हिफाजत करते हुए मारा गया और अब जुनैद नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया दो भाइयों का मुआवजा भी नहीं दिया
2: आराम से रहो सब्र करो
0: और खुदा तुम्हें भी माफ ना करे
1: तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही जाओ
0: ऐसे उसके कान में अली के बारे में बोला पता नहीं मौत के वक्त मेरा शौहर हमारे दीन पर था या तुम्हारे दीन पर छोड़ो मुझे
3: ये क्या हो रहा है
4: यहीं पे इसके हाथ बांधो और बगलों से उठा लो
0: छोड़ो मुझे
4: छोड़ दो उसे दौलत से उसका मुंह बंद कर दो घर का ध्यान रखना

0: दौड़ के जाके बता दो मैं आ गया।
1: जहमत उठाई आपने।
0: अगर खुदा चाहेगा तो कार अहमद होगा बानो।
1: खुदा पर भरोसा करते हैं।
2: आखिर नामा बरका किया हुआ कुछ पता चला?
1: इत्मीनान रखे, एक ईमानदार को ढूंढ रखा है जो मेरी बात का इंतजार।
0: सुना है नईम ने आज मस्जिद के मिंबर पर जितना मुमकिन था शोर मचाया है।
1: क्या क्या कहा है?
0: ठीक से तो नहीं पता, पर शिकवा या धमकी या कुछ और हुआ है।
3: हुक्म दे रखा है कि जो भी खुलकर यजीद की मुखालफत में मुंह खोलेगा और उसके हुक्म पे उंगली उठाएगा उसका खून हलाल और वो मुर्तद है।
1: खुदा के फजलो करम से जब से कूफा की हुकूमत हासिल की है बकवास के अलावा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ना डरिए भाई, इत्मीनान रखिए, सिर्फ खुदा पर भरोसा रखिए। आइए आ जाइए।
0: खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज। किसका साथ दे रहे हो तुम? तुम तो उस्मानियों के हम प्याला हो और उनके प्यारे, तुम्हारे लिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। मगर एकाश अपना मुंह बंद रखते और लोगों को खौफ ज़दा ना करते।
3: मैं ओहद के साथ अपना हिसाब बराबर करके निकल गया।
1: क्या कहा?
3: निकल गया हूँ।
4: मेरी जान की कसम खा के कहो, सच कह रहे हो?
3: झूठ क्यों बोलूंगा, हिसाब किताब बराबर और खत्म।
4: मुझे पता था कि तुम ये काम करके ही मानोगे।
1: एक मर्तबा अचानक?
3: एक साल से मेरे कान में ये बात डाल रही थी। तुम चाहती थी ऐसा करूं तो कर दिया।
1: खुदा करे हमेशा नेक खबर सुनाओ बेटा।
4: खुदा का शुक्र है बगैर काम के भी नहीं रहोगे। कितना अच्छा किया फाजिल से बात करके, लग रहा है जंग से लौटे हो, एकदम बिखरे हुए। अच्छा होगा जरा अपना हाथ मुंह दुरुस्त कर लो।
1: आया सही कह रही है, आज एक नया काम और क्या भरोसा, कल को अपने शान के मुताबिक कोई हमदम खुदाया। खुदा को पसंद नहीं आएगा कि उसके रसूल की सुन्नत में ताखीर करो।
4: खुदा करे दुल्हन सजने का वो दिन जल्दी आए कूफे की दिलबर।
1: इलाही आमीन।

0: काफी लंबे हो गए हैं।
1: आखिरी बार तुम्ही ने तो छोटा किया था। हिलाल के बाल के ख्वाब के बारे में सामिया के अलावा कोई नहीं जानता।
0: कोई जानेगा भी नहीं।
1: पूरे शहर से इमाम की दावत के लिए दस्तखत लिए गए हैं मुझे छोड़ के। लग रहा है अपने बेटे से उम्मीद खत्म कर चुके।
0: अगर दस्तखत करने का शौक था तो खुद ही आगे बढ़ते। तुमने सामिया से अपने गुस्से को इमाम के सर बांध दिया। खत, कासिद और स्याही तुम्हारे पास ही थे।
1: क्या कासिद?
0: फाजिल ने मुझे याद दिलाया कि बासित नाम के एक अमानतदार को छुपा रखा है। हालात इतने खराब हैं कि नामाबर का शहर से बाहर जाना नामुमकिन हो गया है। आवाम में से कोई ये काम कर सकता है? बिल्कुल बासित जैसा।
1: आहिया जानती है?

0: हम तुम पे कुर्बान जाएं।
1: खुदा ना करे ऐसा हो।
0: सारी बुरी नजरें दूर रहे तुमसे, हमेशा खूबसूरत लगती रहे। आपका घोड़ा भी जीन के साथ आंगन में तैयार है।
1: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कितने बेहसास है बाबा। हिलाल मेरी जान की हिफाजत के लिए रखा गया था ना, उसे इनाम देने के बजाय काम से निकाल दिया है। हिलाल बेहतरीन इनाम का हकदार है, आपको उससे इस तरह से पेश आने की कोई जरूरत नहीं थी।
1: ये आवाजें तो सुन रहे हो ना तुम, पता नहीं क्या मंसूबे बना रहे हैं ये। उठोगे नहीं? तुम्हारी बहन के बनाए गए इस फितने में यहाँ बैठने का वक्त नहीं है अब।
2: अब उसका नाम ज़बान पर मत लाना।
0: अगर हिलाल ना होता तो मैं मर चुकी होती बाबा।
2: बस करो।
3: नायला, तुम्हारी आवाज मर्दों तक पहुंच रही है, अगर इज्जत का ख्याल रख लो तो बड़ा एहसान होगा।
0: मुझे माफ कर दो, भाई की इज्जत पे मेरा ध्यान नहीं था।
1: अपने मर्दों का ख्याल नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर तुम पे कुर्बान जाऊं, इतना तो सोच लो कि ये लोग क्या कहेंगे।

0: लाल हिलाल कहने वाली तुम्हारी आवाज पूरे तिजारत खाने में गूंज रही है।
1: तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, ना ही मेरे घर के मर्दों की, क्योंकि आज जितना भी सर घुमाती रही कोई मर्द हिलाल के अलावा देखने को नहीं मिला।
2: मुंह बंद करो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया तो समझ जाओगी तुम्हारे बहादुर कमांडर ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। शुरू से ही तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था।
0: शुरू से क्या मतलब?
2: राघिब के इरादों को जान गया था, देर हो चुकी थी, काफिला निकल चुका था, हवाले कर दिया था कि कोई जिंदा वापस ना आए मेरी बहन के अलावा। खुदा की कसम जो भी किया गैरत की दहकती आग के सबब से था, चाहता नहीं था कि देर हो जाए।
3: मैं शामिल नहीं था,
2: बाबा को नहीं पता था, मैं अच्छे बुरे की पहचान ना कर सका, कुरान से इस्तिखारा देखा, खुद ही हमले का हुक्म दिया, फिर तुम्हारे आने के बाद तमाम माजरा बाबा को बताया।
1: अगर मर्द होते तो खुद ही आते और मुझे राघिब से बचा लाते, मेरे सामने उनके टुकड़े टुकड़े करते और उनका कलेजा बाहर निकालते ये मंजर देखने के लिए मुझे तन्हा नहीं छोड़ते। क्या सही में इस उम्मीद में थे कि मैं जिंदा हूँ?
2: खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा और सलामत हो।
1: जिंदा हूँ नहीं, जिंदा हूँ नहीं, मुझे माफ कर दो कि मेरे खुशकिस्मती ने तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दिया।
2: ज़बान संभाल के बात करो।
0: नहीं, काश बड़े भाई होने के खातिर तुम चुप हो जाओ ताकि इसकी तबीयत को और ज्यादा खराब तुम ना करो।
1: कि पहले ही अपनी भाईचार की खत्म कर चुका है, जब खंजर मेरे गले पर चलने वाला था इसकी भाईचारगी को जुनैद की आंखों में देख लिया था मैंने।
3: नायला, बाबा की जान, अब तो सारा वाकिया जानती हो। उस शिया की औलाद की जानिबदारी छोड़ दो।
1: आपके खानदान में सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं जनाब। आपका भतीजा अपनी मर्जी से मुझे सूली पर चढ़ा देता है, आपका बेटा अपनी मर्जी से पूरे काफले का खून बहा देता है, आपकी हुकूमत का जुनैद खुद सरी करता है और आप इससे अनजान हैं।
0: बेटी,
4: मुबारक हो जनाब नईम। खुदा की कसम, जब से ये खबर सुनी है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जनाब नईम, मेरी
5: हाथ मत लगाओ, बाहर निकलो, बाहर।
4: मेरी बात सुनिए जनाब नईम।
6: चाहिए, खुदा की कसम मैंने रोका था इसे।
5: बाहर निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ।
2: नायला, खुदा की कसम बाबा को बता देता तो वो यकीन नहीं करता, वो तुम्हारी इज्जत को बहाना बना देते कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मेरे और राघिब के दरमियान दुश्मनी को बहाना बना देते। तो मैं क्या करता, हाँ, आसानी से तुम्हें शाम पहुंचने देता।
0: नईम, तुम्हें कहां से पता चला? किसने कही तुम्हें ये बात? बताओ मुझे, खुद राघिब ने?
2: खुद तो नहीं,
0: मैंने कहा था। मेरी छोटी बहन ने शाम से एक दर्द भरा खत भेजा था कि राघिब की जानिब से एक तोहफा आने वाला है जो उसकी सौतन बन जाएगी। काफिला जब यहाँ से निकला तो नायला के अलावा कोई लड़की उसमें थी ही नहीं, तो ये बात झूठ निकली। ये इसका तरीका नहीं था। अगर मुंह खोलते, अगर कुछ बोलते तो बगैर किसी का खून बहे। मैं जानती हूँ, हम खुद ही शाम की तरफ रवाना हो जाते। नहीं,
2: शाम पहुँच जाती तो और भारी कीमत देनी पड़ती।
0: यजीद बिन माविया हमारा दामाद है, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानती थी कि अगर नायला के कदम दरबार में पड़ेंगे तो उसकी बाकी की जिंदगी बर्बादी में गुजर जाएगी। मैं कानिब गई थी और नहीं चाहती थी कि नायला की जिंदगी मेरी बहन की तरह बर्बाद हो जाए। नायला, यकीन करो या नहीं, नईम ने तुम्हें उस बदबख्त इंसान से बचाया है।
3: बस करो, अब बस करो, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा।

0: नायला, मेरी बच्ची।
1: आ, समझ में आया। अगर जरूरत पड़े तो नायला को भी जमा कर दोगे।
0: अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो अगले दिन के उगते सूरज को नहीं देख पाऊंगा मैं। इंसाफ करो, तुम मेरी जान हो।
1: हिलाल को निकाल दिया चूंकि तुम्हारे मंसूबे को पूरा होने नहीं दिया।
2: बूढ़े हो गए और तुम्हारा दिल नर्म बन गया। वो सवेरा होते ही सब कुछ भूल जाएगी।
0: हिलाल को लौटा दो।
2: हिलाल की जगह तिजारत खाने में।
0: ये मत सोचो कि जुनैद की बीवी का रोना और तलमा के बीच में पड़ना और तुम्हारी गैरत का फड़फड़ाना मेरा नजरिया तुम्हारे लिए बदल देगा। नहीं, नहीं। अगर जे सब लोगों के सामने तुम्हारा साथ दिया है, हजारों झूठ बोला कि तुम्हारी इज्जत बाकी रहे, अगर मेरी नजरों से तुम गिर चुके हो

0: अब बस करो, नीचे उतरो बेटा, बैठो। नहीं बैठोगे नईम, पता है आज के दिन की खुशी में तुम्हारे लिए कलेजी भी है। कुछ भी हो, कल से तुम्हारा काम धंधा दुगना हो जाएगा, तो फिर ताकत भी तो होनी चाहिए ना।
1: गाय बकरी की कलेजी दे रही हो, इससे अनजान के राघव का मुकाबला करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था। बहुत फैल गया है ये वाकया।
0: कसम है तुमको, अपना खाना खाओ। अफसोस करने के लिए बहुत वक्त है, मगर आज की रात खुशी मनाने की रात है।
1: बस करो, मेरी खराब हालत देखते हुए तमाशा कर रही हो। रकासा हो या बंदर,
0: काश तुम्हारी याददाश्त काम करे और तुम्हें याद आए कि अगर आज इस तिजारत खाने के मनसब पर हो तो ये सब इसी रक्कासा और बंदर की देन है।
1: तो तुम्हारे ही मनसूबों ने मुझे बर्बाद कर दिया, अपने आप को तुम्हारे हवाले करके बेवकूफी की है। तौबा, हजार मर्तबा तौबा। खुदाए इस औरत से तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ कि हजारों फितना
0: तुम्हारे दामन में लिए फिरती है। कहा था कि जो मैं कह रही हूँ वही करो। तुम ना उसके अहल हो और ना ही देख सकते हो कि तलमा ने कितनी इज्जत और एतबार तुम्हारे लिए बनाया है।
1: मान जाऊं कि तुम मेरे लिए परेशान हो, हा? मेरे बाप के सामने हजार तरीकों से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की कि तुम खबर लेके आई थी, तुमने मुझे बताया कि क्या करना है। काश उसके आखिर में भी साथ देती।
0: अभी उतना भी तुम्हारे बेकार और गद्दी से ठुकराए गए बाप की तारीफों की मोहताज नहीं हुई हूँ कि तुम्हारे ये सारे ताने।
1: रुको, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।

0: हिलाल, तुम कुत्ते का गोश्त खाते हो, मुर्दे का गोश्त खाते हो, शराब पीते हो। नहीं, चूंकि हमने तुम्हें सिखाया है कि हलाल कौन है और हराम कौन, मगर झूठ बोलने के हुक्म के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं दावे से कहती हूँ नहीं बताया है, जरूर नहीं कहा होगा, चूंकि अगर कहा होता तो मेरी आंखों में देख के झूठ ना बोलते।
1: अब क्या हुआ है?
0: क्या हुआ है, क्या हुआ है? तमाम मोहल्ले वाले जानते हैं कि औहद ने सामिया के बेटे को लात मार के अपने घर से बाहर निकाला है, और तुम पूछते हो कि क्या हुआ है?
1: मुझे बोलने
0: नहीं, मत बोलो, कुछ मत बोलो, जो बोलना था अब तक बोल चुके हो। 100 मरतबा कहा हिलाल, 100 मरतबा कहा कि मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, कहा मेरे घर का मर्द और कहा वो औहद। 100 मरतबा कहा कि ये लालच छोड़ दो। मेरी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे।
1: खुदा की कसम, झूठ का इरादा नहीं था, सिर्फ आपकी आंखों की खुशी देख के पूरी सच्चाई नहीं बताई।
0: काश सिफीन में होते और अपनी आंखों से देखते तुम कैसे अली के मुकाबले में तलवार चला रहा था और तुम्हारे बाप और उन जैसे लोगों का खून बहाया था, शायद तब तुम इस दर्जा उनकी तरफदारी ना करते।
1: कहां किसकी तरफदारी की है? ना कोई पूछताछ हुई, ना मुझे बाहर निकाला गया है। उसकी निशानी यह है कि उसकी बेटी को जंगी आदाब सिखा रहा हूं।
0: बाप कम था क्या जो अब बेटी भी बढ़ गई? उस लड़की के पास बाप नहीं है क्या जो उसे जंगी आदाब सिखाए? वाह हिलाल, बहुत खूब, अभी तक तुम्हें पहचान नहीं सकी हूं। बेटा, जो भी कर रहे हो करो, बस इससे ज्यादा अपने शहीद बाप और भाई की इज्जत को मत डुबाओ।

0: काटने के बाद कहीं सफेद और बेरंग ना निकल जाए।
1: ये सफेद कहाँ है मोहतरमा, मैं खून की तरह लाल अनार ही रखता हूँ।
0: हमारी बात कल रात ही हुई थी, ना आज और बाजार के दरमियान।
2: रात के अंधेरे में हिलाल मेरे पीछे आ गया था। खुदा की कसम, वो शोर शराबे और बेइज्जती जो मैंने की थी, अब अपने साए से भी डर लगता है। सोचा यहाँ भीड़ में अच्छा रहेगा। खानम, मुझे बहुत तकलीफ होने लगी है। इतनी ख्वातीन में से जिनके शौहर मर गए हैं, मुझे क्यों चुना है और ऐसा जता रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं।
0: तुम्हें यकीन है कि सिर्फ तुम ही हो? बहुतों का हाथ हक्कुन नास के उनवान से जिनके शौहर ना हो पकड़ रखा है, उन्हीं में से तुम भी हो।
2: यही अनार, मैंने फल थोड़ी मांगा है।
0: ठीक है, अगर तकलीफ है तो मत उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: बेटा, ये सब इकट्ठा करो, जल्दी करो।
0: और एक बात समझ लो, मेरी नेकी और एहसान को मंसूबा

0: का नाम मत दो तुम। तुम्हारे शौहर की वजह से तुम लोगों की जान को भी खतरा हो गया है। मुझे पसंद नहीं किसी मर्द के गुनाहों की सजा उसकी बीवी और बच्चे को मिले। उसका नाम बदनाम हो चुका है, समझ लो। तुम्हारा शाम में कोई रिश्तेदार
1: नहीं
0: है? तो फिर ये शाम जाने का क्या माजरा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे शौहर की जिद तुम लोगों को ले जाने के लिए उस हद तक पहुँच गई थी कि राघव ने उसे डांट दिया था।
1: कुछ नहीं, बस बानो नायला के पास शाम में रहना चाहती थी ताकि उसकी खिदमत कर सके, बस।
0: रह जाते? नायला वहाँ रहने के लिए गई थी क्या? निकाह होना था और वापस आना था, वैसे भी रुकने की तो कोई बात ही नहीं थी ना।
2: ये काफी सस्ता है।
0: और फिर भी वो नहीं मानी?
1: नहीं, मतलब अपने में सोचा कि अगर ऐसा हो गया और बानो रह गई तो हम भी वहीं रुक जाते।
0: मुझसे झूठ मत बोल औरत।
1: गुमान लगाया था, अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी।
0: अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि कौन पागल गुमान के सहारे घर बार छोड़कर जाता है? हाँ,
1: खुदा की कसम यही था खानम।
0: तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी मैं, झूठ तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। बताओ कहाँ से सुना था कि नायला वहाँ रहने वाली है?
1: उसने कहा था, जनाब राघव ने खुद ही मेरे शौहर से कहा था।
0: जैसे अपनी नौकर को कोने में ले जाकर कहा होगा कि अपनी बीवी को यजीद के महल में छोड़ने का इरादा रखता है। हाँ
1: नहीं, मतलब एक रात अवहद राघव के साथ बातें कर रहे थे। बातों के दरमियान जुनैद ने सुना था कि शायद बानो अमीरुल मोमिनीन की बीवी बनने वाली है और हमेशा के लिए यजीद के दरबार में रहने वाली है।
0: अवहद?
1: जी हाँ। फिर जुनैद ने कहा कि कूफे में उसके भाई याद आते हैं, हम भी शाम चले जाएं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा।
0: एक नौकर उस खानदान की बेटी की जान लेना चाहता है और उसकी बीवी नामूस बेचने और झूठ बोलने का इल्जाम उस खानदान पे लगाती है। इस मुंह से बहुत बुरी बातें निकल गई। तौबा कर लो, चूंकि इल्जाम लगाने की सजा जहन्नुम है।
3: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.